0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं डॉक्टर प्रीति सिंह। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपसे बात करने वाले हैं उस शक्ति के बारे में जो बिना किसी दवा के और बिना ही किसी इलाज के एक दर्शन के द्वारा हमारे मन को गहराई से बदल सकती है, जिसको कहा जाता है ध्यान, जिसको कहा जाता है भक्ति मार्ग। क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी में, सोशल मीडिया के दबाव में, पढ़ाई और नौकरी की चिंताएं, इन सब के बीच में मन को शांति कहाँ से मिले? क्या कुछ ही मिनट रोज ध्यान करके हम सच में ज्यादा शांत, सकारात्मक और संतुलित हो सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस्कॉन से जुड़े हुए एक साधक जो भक्ति योग और मंत्र ध्यान का अभ्यास करते हैं। ये सिर्फ एक साधक ही नहीं है, ये एक पेशे से एक इंजीनियर है और इस्कॉन भक्ति शास्त्री के नाम से इनको जाना जाता है, और जो कि TTC सर्टिफाइड भगवत गीता ट्रेनर भी हैं, जो कि शारदा यूनिवर्सिटी के साथ में जुड़े हुए हैं। इन्होंने 13 साल वायरलेस टेक्नोलॉजी पे काम किया है, अलग अलग विभागों में, R&D डिपार्टमेंट्स में इन्होंने IT कंपनीज में काम किया है, और पिछले 10 साल से इन्होंने वैल्यू बेस्ड सेशन और वर्कशॉप्स ली हैं, देश और विदेशों में इन्होंने यात्राएं की हैं, और न्यूयॉर्क, USA, लंदन, कैलिफोर्निया, चाइना, ये कुछ ऐसे नाम मैं बता रही हूँ, ऐसे स्थान में बता रही हूँ जहाँ पे जाके इन्होंने भगवत गीता के प्रसार और प्रचार में अपना योगदान दिया है। बल्कि इसके अलावा ये बहुत सारे एकेडमिक कोर्सेज भी जो है ये डिलीवर करते हैं, जिसमें भगवत गीता, इमोशनल इंटेलिजेंस और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसपे इन्होंने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो आयोजित किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है हमारे बीच में, जीव गोपाल दास जी, और जो हमें बताएंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र, जप माला और सरल साधना के जरिए कोई भी साधारण व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्मिकता, एकाग्रता और आनंद कैसे ला सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का सफर ध्यान और भक्ति के रंगों के साथ में। जीव गोपाल दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा में।
1: धन्यवाद मैम, आपके इस प्रोग्राम में मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जो कि आप इतने सालों से बहुत सुंदर रूप से लेके चल रहे हैं। रियली थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमारा इनविटेशन जो है एक्सेप्ट करने के लिए, और मैं खुद बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, उत्सुक हूँ ये जानने के लिए, क्योंकि आप पेशे से एक इंजीनियर हैं, तो इंजीनियरिंग से आप कैसे भक्ति मार्ग में आप रमे, कैसे इस मार्ग पे आए और कैसे इस्कॉन का एक हिस्सा बन के आप गीता के प्रचार प्रसार में अपने आप को शामिल करने के बारे में सोचा?
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा कि मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैंने 13 साल इंडस्ट्री में जॉब किया, पूरी दुनिया में जाके आया, लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने हर जगह देखी और वो थी हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो खुश नहीं है। मेरा सफर शुरू हुआ उस खुशी के पीछे भागने की। पेशे में तो मैं भागता रहा और अपने आप को एंजॉय किया, लेकिन जब उस खुशी की दौड़ में भागा तो मुझे एहसास हुआ कि पेशे से पूरी बात नहीं बनेगी, थोड़ी सी कमी है। उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था है, जब हम कोई इच्छा करते हैं तो पूरी प्रकृति और भगवान सब मिल के हमारे लिए कार्य करने लग जाते हैं। और यहाँ पर मेरे हाथ में श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता यथारूप, भगवत गीता एज इट इज मेरे हाथ में आई, और उसको क्योंकि एज एन इंजीनियर मुझे रिसर्च में बहुत सारा पढ़ना पड़ता था, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया इसी एटीट्यूड के साथ, स्क्रूटिनाइजिंगली, इसमें कुछ गलती हो सकती है चलो पकड़ते हैं,
0: क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
1: एग्जैक्टली, गलती तो नहीं मिली लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया और इससे मैं भक्ति योग में जुड़ा।
0: किस तरह के परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप?
1: जब हम देखते हैं भगवद गीता हमें बताती है कि आप

0: इस संसार में जब भी जितनी भी खुशी किसी भी वस्तु में जितनी खुशी को एंजॉय कर सकते हैं, वो वस्तु आने वाले समय में आपको उतना ही दुख प्रदान करने वाली। उदाहरण देखिए, आप मान लीजिए बहुत एक दो साल तक पैसा सेविंग करते हैं कि मुझे एक बड़ी कार खरीदनी है।
1: जी जी।
0: और आप खरीद के आ जाते हैं, शोरूम के बाहर निकलते हैं।
1: हाँ।
0: लेकिन जैसे ही आप शोरूम से बाहर निकलते हैं और कार को आप जैसे ही टर्न मारते हैं और रोड पे आते हैं, अचानक से लेट से रिक्शा वाले ने आके स्क्रैच मार के निकल गया। तो बताइए, वो स्क्रैच आपकी गाड़ी पे लगा या आपके दिल?
1: बिल्कुल दिल पे लगा।
0: इस गाड़ी में जितना सुख दिया
1: आपने, तो मुझे कुछ याद भी दिलवा दिया कि हम कहते हैं ना कि ओनली योर चाइल्ड हैज द कैपेसिटी टू हर्ट यू मोस्ट इन द वर्ल्ड। क्योंकि जितना प्यार हम अपने बच्चों से करते हैं, जितना ख्याल उनका रखते हैं, जितनी खुशी वो हमें देते हैं, तो क्या एक वक्त पे वो हमें सबसे ज्यादा दुख दे सकते हैं?
0: बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, और वो देते हैं।
1: अच्छा, हमने भी दिया है। जब हम बच्चे थे तो हम भी अपने जो है माता पिता को, पेरेंट्स को परेशान करते ही थे, तो दुख तो हमने भी दिया है। ये तो एक जनरेशनल प्रोसेस है जो आगे बढ़ रहा है।
0: यस, आप देखेंगे कि जिससे जितना लगाव है उससे जितना प्रेम मिलता है उससे उतना ही क्लेश भी मिलता है।
1: ओके,
0: राइट। ये केवल दूसरों की बात नहीं है, रिश्तों की बात नहीं है, स्वयं हमारा शरीर भी जितना सुख देता है वो जाते जाते उतना दुख भी दे के जाता है।
1: जी,
0: हमारा
1: जी।
0: मन जितना हमें सुख देता है उतना ही दुख भी
1: जाता है। देकर,
0: बिकॉज इस संसार में एक कंसेप्ट है कि सुख के साथ दुख फ्री में मिलेगा, तो दो ऑपोजिट पोल्स के बीच में हमेशा हमें ट्रेवर्स करना पड़ता।
1: तो ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक पैकेज है जो कि साथ में ही आएगा।
0: लेकिन भगवत गीता हमें बताती है कि सुख और दुख के ऊपर भी एक ऐसी दुनिया है। जब सुख के पीछे भागते तो दुख मिल सकता है, लेकिन हाँ। एक ऐसी दुनिया है जहाँ की अगर हम सुख के पीछे भागेंगे तो सुख बढ़ता चला जाए, और उसको कहते हैं वो एक एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि ये दो पोल्स के बीच में दुनिया नहीं चलती। जब सुख के पीछे भागते हैं तो बढ़ता जाता है, और उसको सुख नहीं बोलते, उसको आनंद कहते हैं।
1: आनंद कहते हैं।
0: इस आनंद की खोज हमने शुरू करी और ये बढ़ता चला गया।
1: तो किस प्रकार का आनंद है ये जीव गोपाल दास जी जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम भी उस आनंद की अनुभूति करना चाहेंगे आपकी मौजूदगी के साथ में?
0: ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, और भगवत गीता बताती है कि ऐसे प्रश्न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकता है। अगर इसलिए आप सबके मन में भी यही प्रश्न है कि हम कैसे इस सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, इस आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको ABCDE फॉर्मूला देंगे। ए फॉर्मूला इज, ऐसे लोगों के साथ पहले एसोसिएट कीजिए जो कि इस आनंद की खोज में हैं। क्योंकि अगर मैं देखूं तो क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर नहीं बनते अगर वो हॉकी के मैदान में जाकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करते।
1: जी।
0: विच मीन्स कि उन्हें क्रिकेट के एक्सपर्ट्स का एसोसिएशन
1: चाहिए था,
0: और एक समय उन्हें चाहिए था, और एक ऐसा समय आया जब पूरी दुनिया उनके एसोसिएशन के पीछे दीवानी थी। सो एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: यानी जिन लोगों के साथ हम जुड़ते हैं, जिस स्थान पे हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है हमें बनाने में, हमारी पर्सनालिटी को एस्टैब्लिश करने में।
0: एग्जैक्टली। आप देखिए कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैं सोशल मीडिया से दूर होना चाहता हूँ, मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक और बताने आजकल कितने प्लेटफॉर्म्स आ गए, इनसे दूर होना चाहता हूँ। परंतु ये दूर नहीं हो पाते, प्रयास करते हैं, हर साल रिजोल्यूशन लेते हैं कि अब नहीं करूंगा, ये आदतें मैं छोड़ दूंगा। नहीं छोड़ पाएंगे जब तक कि ऐसे लोगों का एसोसिएशन नहीं लेंगे जो कि छोड़ चुके हैं या छोड़ने का सीरियस प्रयास
1: कर रहे हैं, या इस प्रकार के वातावरण में रहते ही नहीं है, उसका प्रयोग करते ही नहीं है।
0: एग्जैक्टली।
1: तो देखिए, जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है हमारा, और इसके जो श्रोता है वो काफी हद तक एक छात्र कम्युनिटी भी है, स्टूडेंट कम्युनिटी भी है, तो खास तौर पे मैं उनको ध्यान में रखते हुए ये बात आपसे पूछ रही हूँ कि समय के साथ में कई बार हमारे वातावरण के भी प्रभाव में आके हमारे कुछ स्टूडेंट्स कुछ एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं, तो उस एडिक्शन से बाहर निकलने का भक्ति साधना में क्या जरिया हो सका है?
0: आपका ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा स्पिरिचुअलाइज्ड क्वेश्चन है। इस प्रश्न के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, बट देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स तैयार हैं कि नहीं।
1: जी।
0: सो फर्स्ट थिंग इज, अगर स्टूडेंट्स किसी भी तरह के एडिक्शन में फंसे हैं तो उन्हें सबसे पहली चीज ये सोचनी चाहिए थी क्या वे बदलना चाहते हैं। अगर उनके अंदर से प्रश्न आता है मैं बदलना चाहता हूँ, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। करने के लिए उन्हें ऐसे व्यक्तियों से एसोसिएशन लेना पड़ेगा जो कि अपने जीवन को बदल चुके हैं।
1: हाँ।
0: मैं एक सुंदर सा उदाहरण देता हूँ। शीला प्रभुपाद, हाँ। जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में, हाँ। वो न्यूयॉर्क पहुंचे,
1: हाँ।
0: और न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद
1: जी।
0: वो उनके गुरु ने उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया था कि जाकर आपको विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना है भगवद गीता और भागवत धर्म का
1: जी।
0: तो इसीलिए वे पहुंचे वहां पर और वहां उन्होंने देखा कि समाज में कोई नियम ही नहीं है। एडिक्शन तो छोड़ दीजिए, एक्सट्रीम एडिक्शंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसा एडिक्शन नहीं था जो वो करते थे
1: जी,
0: नहीं करते थे।
1: परंतु
0: श्रीला प्रभुपाद ने उनको एक चीज दी, जैसा हमने डिस्कस किया, एसोसिएशन, संघ प्रदान किया। किसका संघ दिया? श्रीला प्रभुपाद भगवान के एक शुद्ध भक्त थे और उन्होंने शुद्ध भक्त जब किसी व्यक्ति को संघ प्रदान करता है तो किस प्रकार से उनके जीवन में चेंज आया आप देखिए। ऐसे लोग जो कि एडिक्शन से बाहर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण का नाम जीवन में कभी सुना नहीं
1: जी,
0: लेकिन वे भक्ति योग को इतना सीरियसली प्रैक्टिस करने लगे कि सुबह 4 बजे उठते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे, भगवद गीता पढ़ते ही नहीं थे, जाकर भगवद गीता को डिस्ट्रीब्यूट भी करते थे ज्यादा से ज्यादा। दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। जिसने कृष्ण का नाम नहीं सुना, भगवद गीता का भी सुना नहीं है, वो भगवद गीता के डिस्ट्रीब्यूशन को कर।
1: बल्कि मेरा अपना एक पर्सनल जो है अनुभव कहिए, ऑब्जर्वेशन कहिए, कि हम जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, हम जिस देश में रह रहे हैं, वहाँ तो गीता हमारे जीवन का एक आधार है, है ना। लेकिन अगर हम विदेश की बात करें तो उनका जुड़ाव तो आप छोड़िए, कि आपने जैसे कहा कि उन्होंने कभी धर्म का नाम ही नहीं सुना था इस प्रकार का, तो उनका जो भक्ति भाव हम देखते हैं वो हमें बहुत इम्प्रेस करता है कि कैसे एक इंसान एक डिफरेंट कल्चर से आकर उठकर दूसरे कल्चर में किस तरीके से अपने आप को जो है वो समाहित कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये जो असर आप बात कर रहे हैं, ये कैसे होता है, किस प्रकार से ये हम किसी व्यक्ति को जो है प्रोत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं कि आप इस भक्ति भाव की तरफ जाएं, आप एडिक्शन से जो है बाहर निकलें, और क्या क्या जरिए हो सकते हैं इसको अपनाने के?
0: सबसे प्रमुख, मैम आपने बहुत अच्छा ये भी प्रश्न किया है, सबसे प्रमुख चीज जो व्यक्ति को जानना चाहिए, अपनी सही पहचान को
1: जी।
0: हमारी सही पहचान का अर्थ है कि क्या जो मैं रोज सुबह ब्रश करते हुए आईने में देखता हूँ,
1: हाँ,
0: क्या मैं यही हूँ? कहने का तात्पर्य ये है,
1: यानी हमारा क्या शरीर ये हमारा ही है या हम ही शरीर के ही हैं,
0: या मैं शरीर हूँ भी कि नहीं,
1: हूँ भी कि नहीं।
0: फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण की तरह देखिए, अगर ड्राइवर कहे कि मैं ही गाड़ी हूँ,
1: हाँ,
0: तो क्या ये सही होगा?
1: हाँ।
0: तो ड्राइवर तो गाड़ी नहीं होता,
1: नहीं हो सकता।
0: गाड़ी केवल एक माध्यम है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
1: जी।
0: इसी प्रकार से ये शरीर हम नहीं है, क्योंकि ये शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि आप शरीर नहीं है, आप शरीर को चलाने वाले ड्राइवर अर्थात आत्मा है, और उस आत्मा की पहचान अगर आप सही से कर लेते हैं तो फिर आप केवल इस शरीर को जैसे चलाना चाहें, अपने मन और बुद्धि को जैसे चलाना चाहें, इसको चला सकते हैं। मन तब परेशान करता है जब आप सोचते हैं मैं मन हूँ। जब आप मन को बोलेंगे कि तुम्हारे साथ जो भी प्रॉब्लम है, तुम मैं नहीं हूँ, अर्थात मैं आत्मा हूँ और तुम मेरे मन हो, मैं मन नहीं हूँ, जब मन को स्वयं से अलग कर कर वो व्यक्ति देखने लगता है तो उसमें सुधार की गुंजाइश है। लेकिन किसी व्यक्ति को आप बोलेंगे कि आप सही नहीं है, तो उस व्यक्ति को ये प्रश्न पूछना चाहिए, सही क्या नहीं है? आप शरीर की बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं, या बुद्धि की बात कर रहे हैं? कि आत्मा तो हमेशा सही है,
1: सही है बिल्कुल।
0: तो जब पता चला कि प्रॉब्लम तो मन में थी, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो उस पे काम करते हैं। लेकिन वो मन मैं ही मान लूंगा ना, तो मेरा अहंकार इसे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मानने नहीं देगा, और मेरा अहंकार मुझसे कहेगा अरे मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। और यहाँ हम सुधार करने के लिए तैयार नहीं, कितना ही बुरा एडिक्शन हो हमारे जीवन में
1: जी,
0: लेकिन वो सुधारा जा सकता है अगर हम एक्सेप्ट करें कि वो प्रॉब्लम हमारे अंदर नहीं है, हमसे जुड़े एक एलिमेंट में, तत्व में है। गाड़ी में प्रॉब्लम है उसको सुधार सकते हैं, ड्राइवर में प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो गया ना। इसलिए मन को अपने से अलग कर कर देख कर और फिर उस पर कार्य करें, बड़ा आसान।
1: तो ये जो आप कह रहे हैं कि शुरुआत करें अपने मन पे काम करने की, उस मन पे काम करने के लिए पहला स्टेप क्या हो सकता है?
0: मन को क्या अच्छा लगता है वो करिए, कितना आसान हो गया ना।
1: जो मन करे, जहाँ मन जाए, क्योंकि मन तो एक चंचल है। अक्सर हम कहते हैं कि मन बहुत चंचल है, ये शब्द यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका मन के लिए, तो उस चंचला को भी तो नियंत्रित करना जरूरी होता है।
0: आप अगर स्प्रिंग को दबाएंगे, एक साल तक दबाए रखेंगे, तब भी वो उछल के रिएक्ट करेगा। मन भी बेचारा ऐसा ही है, उसमें इसकी क्या गलती, उसकी प्रकृति ऐसी। मन में 3 चीजें होती है, थिंकिंग अर्थात सोचता है, फीलिंग अर्थात कुछ महसूस करता है, और इंटेंशनैलिटी यानी कि कुछ करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। अब ऐसे में जो दूसरा मैंने पार्ट, मन के अंदर फीलिंग्स होती हैं, कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ महसूस करना चाहता है, जहाँ उसको अच्छा लगता है वो करता है ना। तो अगर हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना है और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ना है। देखिए दो चीजें मन एंजॉय करता है, एक तो या तो आध्यात्म में बढ़कर अपने आप को कंट्रोल कर लेगा या फिर यू नो भौतिक विषयों में एडिक्शन में कहीं ना कहीं फंस जाएगा।
1: और भौतिक भी अगर हम बात करें तो ये सिर्फ एडिक्शन जो कहते हैं कि हर व्यक्ति एडिक्टेड है, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ अल्कोहल एक एडिक्शन है या ड्रग्स एक एडिक्शन है। मुझे कई बार लगता है कि चाय भी एक एडिक्शन है जो हम मेरे जैसे भारतीयों को बहुत विचलित करती है। बार बार किसी से बात करने की इच्छा होना, मन को खाली करना, वो भी एक एडिक्शन है। कुछ लोग नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलाते हैं अपने आसपास, वो भी एक एडिक्शन है कि उनको उस तरह की बातें करने की आदत हो गई है। तो ये जो एडिक्शन है जो खास तौर पे हम जिस पे बात कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में उससे निकलने का क्या तरीका बताया गया? उस मन को नियंत्रित तो नहीं करने की बात कहूंगी मैं अब, क्योंकि आपने कहा जितना नियंत्रित करेंगे वो उतना बेकाबू होता चला जाएगा, तो उसको सही मार्ग पर लेकर आने का क्या तरीका हो सकता है?
0: वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। अब अगर दूसरे स्टेप पे आगे बढ़े, कंट्रोल मत करिए, फोर्स मत करिए मन को, मन को जो अच्छा लगता है वो करते हैं ना।
1: हाँ।
0: तो हम लाइफ में अगर एनवायरनमेंट ऐसा रखें जैसे कि सुबह जल्दी उठना, सुबह वॉक पे जाना, सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करना, अच्छा क्वालिटी का भोजन लेना, केवल जिह्वा की तृप्ति के लिए रोज पिज्जा बर्गर नहीं खाना। तो कहने का तात्पर्य अगर अच्छी आदतों में भी मन को अच्छा लगने लगे तो करने लगेगा। तो मन को ये कन्विंस करना और उस ज्ञान के स्तर पर लाना कि अच्छी चीजें अच्छी,
1: तो यानी मन को भी हमें कन्विंस करना होगा, बच्चे की तरह समझाना होगा उसको कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है ये बुरा है,
0: उसके इमोशंस में अच्छी चीजों को भरना है। जैसे कि जब टंकी में पानी गंदा होता है तो हम टंकी पूरी इतनी बड़ी यू नो टैंकर साफ करने तो नहीं जाते। हम क्या करते हैं,
1: फिल्टर लगा देते हैं।
0: हाँ। फिल्टर भी लगाते हैं और एक और चीज करते हैं, ऊपर से साफ पानी चालू करते हैं और नीचे से गंदे पानी को निकलने का रास्ता छोड़ देते हैं। हाँ। जैसे ही गंदा पानी निकलता जाता है पानी साफ हो जाता है। कहने का तात्पर्य अच्छे विचारों को, सात्विक विचारों को मन में आने दें, भगवद गीता के उत्तम विचारों को मन में आते रहने दें और धीरे धीरे आप देखेंगे कि मन में जगह तो उतनी है ना। जैसे अच्छे विचार आएंगे, जो पुराने विचार हैं, दुखी विचार हैं, धीरे धीरे बाहर होते जाएंगे। कुछ समय में आप देखेंगे मन में अच्छे विचार ज्यादा हैं और स्वयं अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते।
1: अक्सर कहा जाता है कि मेरा मन नहीं लगता है ना, और जैसे हमारे बॉलीवुड ने मन को बड़ा रोमांटिसाइज भी कर दिया है कि मेरा मन तुम्हारे बगैर नहीं लगता है, या मन जो है वो अकेले खुशी नहीं देता है, किसी और के साथ खुशी नहीं देता है। तो मन लगाने का क्या तरीका है भक्ति मार्ग में, मन को हम कैसे लगाते हैं और किस प्रकार से जो है वो, जैसे आप एक तरीका आपने सुझाया कि सुबह समय से उठें और मेडिटेशन करें, मेडिटेशन करने के क्या तरीके हो सकते हैं, ये हमें कैसे अफेक्ट करता है, थोड़ा सा इस बारे में बताइए।
0: इस पे दो प्रश्न मैं देख पा रहा हूँ। पहला ये कि मन को कैसे हम अध्यात्म में लगा सकते हैं
1: जी।
0: और बॉलीवुड ने जिस प्रकार से मन को या दिल को जिस प्रकार से रोमांटिसाइज किया है उसी को यूज कर लेते हैं। जब किसी से प्रेम होता है यू नो आप देखिए बॉलीवुड में भी या हॉलीवुड में भी लव जो होता है, प्रेम होता है
1: जी,
0: वो वन साइडेड होता है,
1: एक तरफा होता है।
0: कहने का तात्पर्य है कि उसे एक तरफा ही रखे ना, बट प्रॉब्लम
1: लेकिन क्या एक तरफा जो प्रेम है क्या वो पूर्ण प्रेम कहा जा सकता है, क्या वो फुल सर्कल है?
0: यस वही पूर्ण है। यही मैं इस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि एक तरफा लव ही प्रेम ही जो है पूर्ण है।
1: हाँ।
0: जब दो तरफा से हो जाता है
1: तो
0: उसमें स्वार्थ जुड़ जाता है, मैं कुछ आपके लिए करता हूँ आप मुझे बदले में कुछ देंगे, ये तो बिजनेस हो गया,
1: ये बिजनेस हो गया।
0: प्रेम तो केवल एक तरफा ही होता है,
1: यानी अपेक्षा रखना जो है वो बिजनेस है।
0: एग्जैक्टली अभी हम भक्ति योग में यही करते हैं कि भगवान से कहते हैं, एक संस्कृत में चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर श्लोक कहा है
1: जी।
0: उसकी छोटी सी पंक्ति ऐसी है
1: जी।
0: यथा तथा वा विदधा तुलं पटो मत प्राण नाथस्तु स एव नापरः। व्हाट इज द चैतन्य महाप्रभु सेज, महाप्रभु सेज कि देखिए भगवान मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ।
1: हाँ।
0: मैं आपकी प्रेम से सेवा कर रहा हूँ
1: जी,
0: आप मेरे साथ कुछ भी करिए,
1: समर्पण,
0: आप कुछ भी करिए मेरे
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: कितने
1: जी।
0: ही बुरे दिन दिखाइए लेकिन ये मेरी परीक्षा है, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप ही मेरे प्राणनाथ
1: जी,
0: हैं
1: जी, जी।
0: जब हम ऐसा कर देंगे तो स्वार्थ से हम बाहर निकलने के लिए अपने आप को खोल देते हैं
1: यानी प्रभु को समर्पित कर दें हम स्वयं को।
0: एक जगह प्रेम है और दूसरी तरफ काम है। बॉलीवुड में काम को प्रेम की तरह दिखाया जा रहा है लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान में होता है वो इन दोनों को अलग अलग करके देख पाता है और वो शुद्ध प्रेम से बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा में लगा रहता है, उससे जो आनंद आता है वो बढ़ता जाता है। लेकिन अगर कामवश व्यक्ति किसी प्रेम में फंसा है, काम में फंसा है, तो थोड़े दिन के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। इसीलिए हम जब काम की भावना से किसी रिलेशनशिप में या मैरिज में या किसी भी रिलेशनशिप में जब घुसते हैं
1: जी,
0: तो उस रिलेशनशिप में बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है।
1: इट डजंट लास्ट लॉन्ग।
0: यस। और जब निस्वार्थ सेवा में जाइए उस रिलेशनशिप में, वो पूरे जीवन आपके साथ।
1: तो ऐसा कोई मार्ग, जैसे अक्सर हमने सुना है कि आपने कहा दो तरीके हो सकते हैं मन को जो है वो सही रास्ते पे लगाने के, एक मेडिटेशन हो सकता है अगर हम करें तो मन नियंत्रित रहेगा, दूसरा तरीका भक्ति मार्ग भी हो सकता है। तो क्या ये दो अलग अलग तरीके हैं, और हैं तो किस प्रकार से ये हमारे शरीर और मन पे काम करते हैं?
0: ओके, तो इसमें हम क्विकली अब अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि भक्ति क्या अलग से करनी पड़ती है या हमारे अंदर है।
1: जी।
0: सो अगर शॉर्ट में बोले तो एक बच्चा माँ से बच्चे का क्या रिलेशन होता है, क्या रिश्ता है ये माँ और बच्चे का?
1: एक जुड़ाव है, एक ममता। हाँ,
0: ममता, ममता में प्रेम है।
1: जी जी।
0: तो ये प्रेम का बच्चे का और माँ का जो रिश्ता है,
1: जी जी,
0: इसमें जब माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर बच्चे को सर्व करती है।
1: जी जी।
0: एक दिन ऐसा आता है जब बच्चा उसके पंख
1: निकल
0: जाते हैं, निकल जाते हैं और वो उड़ना चाहता है। माँ कहती है बेटा कोई बात नहीं, जा तू उड़ और अपने जीवन में यू नो सक्सेस को, सफलता को प्राप्त कर। वो रोती है, अंदर ही अंदर रोती है, लेकिन वो निस्वार्थ होती है। ये माँ का प्रेम
1: बांधता नहीं है, यानी प्रेम कभी बांधता नहीं है हमें किसी रिश्ते में या फिर
0: दूसरे रिश्ते के बारे में सोचता है कि ये कितना अच्छा करेगा इस प्रेम में। अपने स्वार्थ से बाहर निकल के व्यक्ति
1: निकल के सोच पाता है।
0: और यही भक्ति है। क्यों? क्योंकि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और हम भगवान का अंश है।
1: जी,
0: जैसे कि शरीर से माँ ने हमें जन्म दिया है, वैसी आत्मा रूप में इस आत्मा को भगवान ने जन्म दिया है।
1: जी,
0: भगवान
1: जी,
0: का अंश है ये आत्मा। तो उस एंगल से हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता हुआ? प्रेम का,
1: प्रेम का रिश्ता।
0: और प्रेम का रिश्ता है तो क्या करेंगे, हम उनकी सेवा करेंगे। शरीर समाप्त हो जाएगा एक दिन, लेकिन आत्मा हमेशा अमर है,
1: साथ में रहेगी। बिल्कुल,
0: हमारा इटर्नल शाश्वत रिश्ता है भगवान से प्रेम का। और यही अगर हम प्रेम भगवान से करते हैं तो भक्ति हमारे जीवन का अंश है, अलग से नहीं करनी है।
1: जी जी। और ये जो मार्ग है इस पे चलने में परिवार का, हमारे आसपास के घर का माहौल का कितना असर पड़ता है?
0: जैसे हमने कहा कि शरीर जो है बदलता रहता है, आत्मा का पिछले जन्म में तो कोई घर था,
1: घर था।
0: अगर उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है
1: जी
0: भक्तियों को, इस जन्म में आकर उसको अगर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलता तब भी वो फेवरेबल एनवायरनमेंट बना लेता है या उस फेवरेबल एनवायरनमेंट में चला जाता है। ये नेचुरल है हमारे साथ। अगर मुझे क्रिकेट खेलने की इच्छा तो अपने आप क्रिकेट के ग्राउंड में मिलूंगा मैं आपको। वैसे जिसका भक्ति योग, जिसने पहले भी पिछले जन्मों से भक्ति करी अभी पूर्ण नहीं हुई, पूर्ण करने के लिए वो अगले जन्म में भी वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के पहुंच जाएगा।
1: यानी कि अक्सर हम कहते हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें लगता है कि शायद इनसे पहली बार नहीं मिले, मिलते ही जैसे आज आपसे मुझे मिलके ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे पहले भी मिली हूँ। तो ये एक हमारा रिश्ता होता है जो हम कभी पहले किसी और जन्म की जब हम बात करते हैं, या एक आप कहिए कि लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, लाइक माइंडेड जो पीपल होते हैं, तो उनका मन को एक दूसरे को आप पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं कि आप जो बात करें वो मेरी समझ में आ रही है और जो मैं पूछना चाह रही हूँ वो आप उस भाव को समझ पा रहे हैं। तो ये रिश्ता बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। मैं जीव गोपाल दास जी एक ऐसी समस्या की बात करूंगी कि जो हमारा जो युवा वर्ग है खासतौर पर वो बहुत जूझ रहा है समस्या से, और ये समस्या ऐसी है कि मुझे लगता है कि जिसमें शायद उनकी ज्यादा गलती नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया का भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, उनको पोस्ट करना होता है, लाइक करना होता है, दोस्तों ने लाइक नहीं किया, या फिर रात भर जो है गेम खेलते हैं, सुबह पेरेंट्स जो है वो शिकायत करते हैं कि सुबह टाइम से नहीं उठते हैं, स्कूल में नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, एग्जाम्स के समय पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये जो सारी चीजें हैं उनको स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है। तो क्या भक्ति मार्ग में ऐसा कोई रास्ता है जिसके द्वारा जो है वो अपने इस तनाव से बाहर निकल सकते हैं?
0: अभी हमने जैसे चर्चा किया कि भक्ति करनी नहीं होती,
1: हो जाती है,
0: हमारे अंदर
1: अंदर होती है।
0: इसी प्रकार से अगर मान लीजिए, उदाहरण देता हूँ कि एक मछली से कहा जाए कि आपको पेड़ पे चढ़ के कॉम्पिटिशन में फर्स्ट आना है, और बंदर से कहा जाए कि पानी में आपको एक घंटे तैर कर फर्स्ट आना है, तो दोनों के लिए अननेचुरल है, अप्रकृतिक है, प्रकृति के उनके विरुद्ध है।
1: बिल्कुल।
0: सो भक्ति योग हमें ये बताता है कि आपकी जो प्रकृति है उसको कैसे हम भगवान की सेवा में लगा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं जैसे आपने देखा मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर था
1: जी।
0: अब 10, 12, 13 साल जॉब करने के बाद अगर मैं भक्ति में आता हूँ तो क्या मुझे अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए? डेफिनेटली यस। और इसी तरह से हम शारदा यूनिवर्सिटी में कुछ समय से एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं
1: जी,
0: और ये प्रोग्राम बड़ा सुंदर है
1: जी हाँ। और मैं खास तौर पे इस प्रोग्राम पे अभी आने ही वाली थी, क्योंकि इसके बारे में भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि किस रंग में ये प्रोग्राम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, किस तरीके से ये हमारे छात्रों को, हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को प्रभावित कर रहा है, और कुछ ऐसे उदाहरण अगर आंखों के सामने आप देख पाते हैं, कोई ऐसे

0: एग्जांपल कि बच्चों के जीवन में कोई बदलाव आ रहा है इससे, तो वो मैं जानना चाहूंगी।
1: राइट मैम, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सो नेचुरली हमारे कुछ फीलिंग्स होती हैं, वो किसी ना किसी डायरेक्शन में इंक्लाइंड होती हैं। जैसे कि जैसे ही हमने यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को शुरू किया, हम शुरू में कीर्तन करते हैं विद म्यूजिक एंड डांस, तो उसके साथ साथ म्यूजिक डांस के साथ जब हम इस कीर्तन को करते हैं तो अपने आप ही नेचुरली कुछ स्टूडेंट जिनको म्यूजिक अच्छा लगता है, जिनको डांस अच्छा लगता है, स्वयं अपने आगे आ गए, उन्हें कहा हम भी कीर्तन करना चाहेंगे। सो उनके अंदर वो उनका नेचर था, हमने उनको एक चैनलाइज किया। ऐसी कुछ स्टूडेंट्स आए बोले कि सर हम इंजीनियरिंग में हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जो मैंने किया, मैंने इस प्रोफेशन से सीखा और मैं अभी उसी टैलेंट को सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूँ। हमारे आध्यात्मिक इंस्टीट्यूशंस को भी जो है टेक्नोलॉजी में का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, अर्थात ये टेक्नोलॉजी जो हमें दे सकती है वो हमें भी करना चाहिए। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने कहा यस सर हम भी करना चाहेंगे, आप आइए इंटर्नशिप करिए हमारे साथ में और अच्छे से एक्सपोजर लीजिए। बच्चे बिल्कुल खुश हो गए, बोलते यस सर हम करना चाहेंगे। उन्होंने अपना डिटेल्स दिया कि भाई आप ये रहा हमारा सीवी, आप तो प्लीज इसको परस्यू करिए। कुछ स्टूडेंट्स आए बोले सर मैं क्या कर सकता हूँ। हमने कहा आप क्या कर सकते हैं, आप सोचिए आपका नेचर क्या, आपकी प्रकृति क्या है। और आप भगवत गीता में बताती कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है, अर्जुन के अंदर तीर चलाने का टैलेंट था, उसको भगवान की सेवा में लगाया। वैसे आपके अंदर जो भी टैलेंट है अगर उसको भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहे तो वो आपके बंधन का, इस संसार में बंधन का कारण बन सकता है। अगर पूर्ण रूप से मुक्त होना है तो जो कुछ भी आपके अंदर टैलेंट है उसको भगवान की सेवा में लगाइए। इसलिए स्टूडेंट से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये म्यूजिकल अवेकनिंग का जो प्रोग्राम है एवरी ट्यूजडे इवनिंग 4 PM शारदा यूनिवर्सिटी के टेम्पल में हॉल में होता है, और वो आकर जरूर अटेंड करें। वहाँ आप अपने टैलेंट को फ्रीली कैसे आध्यात्मिक रूप से भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। मंदिर केवल घंटी बजाने के लिए नहीं है, मंदिर वो है जो आपके अंदर के नेचर को बाहर निकाल कर लाए, ताकि आप अंदर और बाहर दोनों तरफ सफाई से देख सके। So, ये हम
0: अध्यात्म हमें वो क्लैरिटी देता है कि हम अंदर और बाहर अच्छे से देख पाते हैं, डिफरेंस समझ पाते हैं।
1: हाँ, आप देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसका टैलेंट जो था वो तीर चलाने में था, और भगवान ने उससे कहा तुम्हारा टैलेंट है तीर चलाने का, तो उसे ही भगवान की सेवा में लगाओ, अलग से जाकर कहीं योग और ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है।
0: जी
1: यही भक्ति योग,
0: यानी अगर हम अपने कर्म पे ध्यान दें, जैसे गीता में कहा गया है कि कर्म कर और फल की इच्छा मत कर, कर्म करते जाएं और भक्ति भाव से अपने कर्म को प्रभु को समर्पित करते हैं, तो ये जो समर्पण की जो भावना अगर हमारे अंदर रहेगी तो ये स्वयं ही हमें भक्ति मार्ग पे ले जाएगी।
1: जी।
0: और जो तनाव, डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी जो हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम स्वयं ही इससे बाहर निकल पाएंगे।
1: यस मैम, बहुत सुंदर कहा। इसमें छोटी सी बात मैं जोड़ूंगा
0: जी
1: कि हमें किसी ना किसी को गुरु तो हम बना ही लेते हैं, या तो भगवत गीता को अपना गुरु बना लें या मन को गुरु बना लें।
0: मन को गुरु
1: बना, मन को बनाएंगे तो वो क्या करवा रहा है ये तो हमने देख लिया। एक बार भगवत गीता को गुरु बना के देखिए,
0: बना के देखिए। तो जो गुरु की जो एक कंसेप्ट हमारे धर्म में मौजूद है, हमारे पुराणों में मौजूद है, तो वो गुरु ही हमें जो है आगे लेके जाते हैं, हमारे सूत्रधार बनते हैं जीवन के।
1: यस, भगवत गीता 4th chapter में भगवान इसको कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनाम् तत्वदर्शिना। जिसने तत्व को देखा है वो आपको तत्व के बारे में बता सकता है। आपने बस 3 चीजें करनी है, जाके समर्पित करना है, दूसरा प्रश्न पूछना है, तीसरा थोड़ी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव। और इसी की प्रैक्टिस हम यहाँ करते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो दोस्तों मुझे लगता है कि जितना आनंद मुझे, जैसे आनंद की अनुभूति मुझे हुई है इस कार्यक्रम को आप सबके सामने प्रस्तुत करते हुए, आप सबके बीच लेके आते हुए, उतनी आनंद की अनुभूति आपको सुनने में भी जरूर प्राप्त हुई होगी। तो अभी है हमारे साथ में जीव गोपाल दास जी, जो कि अपने जीवन को समर्पित कर चुके हैं और गीता दर्शन के लिए और इस्कॉन के प्रचार प्रसार के लिए, भक्ति मार्ग के लिए, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जैसे आपके जैसे लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने समय निकाला और हमें, हमारे छात्रों के साथ में, हमारी कम्युनिटी, हमारे समुदाय के साथ में सुनो शारदा 90.8 FM पे हमारे बीच में ये कुछ अपने विचार साझा किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते रहेंगे दोबारा से, फिर से कोशिश करेंगे कि फिर से आपके विचारों को हम सुनो शारदा पे दोबारा से जो है प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद
1: इस प्लेटफॉर्म पर गीता के विचारों को व्यक्त करने का जो आपने मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।

हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरो का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Solo Sharda.
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरी यानी गगन के साथ। भाई, जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, और यही मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। चूंकि ये सामुदायिक रेडियो स्टेशन है तो जाहिर सी बात यह है कि हम समुदाय से लोगों को यहां आमंत्रित करते हैं, उनकी बातें हम जन जन तक पहुंचाते हैं। अगर आपके पास कोई हुनर है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात रखना चाहते हैं, या कुछ गाना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं, या कुछ और, जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में मैंने एक खास मेहमान को आमंत्रित किया है जो कि पेशे से वकील हैं, लेकिन वो अच्छा गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो किस तरीके से इस माहौल में, यानी कि वकालत को वो बैलेंस रखते हैं और अपने सिंगिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी वो लगातार काम करते आ रहे हैं, तो मैं आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, आप गामा टू ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो सर, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: थैंक यू सर। गगन जी, थैंक्स अ लॉट।
10: काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, और मैं ये भी अपने श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि पहले हमारी फोनिक बात हुई और उसके बाद हमें समय नहीं मिल पाया, लेकिन ये सच है कि इंसान जब कोशिश करता है तो वो कोशिशें कहीं ना कहीं कामयाब हो जाती हैं। तो एक बार पुनः आप सबका, आपकी फैमिली भी यहाँ आई हुई है, तो इसलिए मैं सबका यहाँ जिक्र कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका।
11: थैंक यू गगन जी।
10: तो नरेंद्र सर, मुझे आप ये बताएं कि ये जो आपका फील्ड है, आप पेशे से लॉयर हैं और सिंगिंग आप बाय प्रोफेशनली गाते हैं या बस शौकिया गाते हैं, या यूं कहें कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को।
11: थैंक यू सर। आई एम सिंगिंग व्हेन आई वाज इन क्लास 6-7 इन डॉक्टर एम एल शर्मा मॉन्टेसरी स्कूल, सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर। मेरे पिता, जो कि स्वर्गीय राज कपूर और स्वर्गीय दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन थे, तो उस दौरान कैसेट्स लेके आते थे, आन आवारा, जिस देश में गंगा बहती है, उस दौरान उनकी फेवरेट मूवीज रही हैं, देखते आए हैं। उस समय हमारे यहाँ टेप रिकॉर्डर होता था सर
10: जी,
11: तो मैं स्वर्गीय मुकेश जी व रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने सुनकर बड़ा हुआ सर। थोड़ा बड़ा हुआ तो 10th क्लास के दौरान एमएस इंटर कॉलेज सिकंदराबाद में एनसीसी ज्वाइन की। 11th में एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए आई हैव गॉट मेनी अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज। अटेंडेड ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन हेल्ड एट सापुतारा गुजरात एंड गॉट बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग कॉम्पिटिशन इन 1993
10: जी।
11: एंड ऑल्सो बी सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी 94 में ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन में बेस्ट पार्टिसिपेंट अवार्ड इन सोलो सॉन्ग एंड ग्रुप सॉन्ग कॉम्पिटिशन में एंड अवार्डेड बाई कर्नल एसन थ्रॉड जो उस समय वहाँ ट्रैक मैनेजर थे। इट वॉज नेशनल लेवल का ये
10: कॉम्पिटिशन था
11: सर।
10: तो यू कह सकते हैं कि इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत हुई।
11: यस सर।
10: ये आपको विरासत में मिला है।
11: यस
10: क्योंकि
11: सर,
10: आपके
11: यस
10: फादर भी म्यूजिक का शौक रखा करते थे। उस तरीके से फिर आपको गाने का मौका मिला। जहां पर भी आपको मौका मिला वहां आपने चौका मारा। जी जी,
11: जैसा कि नाम में ही है ऑल इंडिया ट्रैक 1994 आई गॉट एनसीसी सी सर्टिफिकेट एज सीनियर अंडर ऑफिसर इन बी ग्रेड। ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉलेज में हर नेशनल फेस्टिवल पर 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त हो
10: आप गाते थे।
11: नहीं सर, देशभक्ति के गीत। और डिग्री कॉलेज में 95 में जो भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते वहाँ मेरी परफॉर्मेंस सर जरूर रहती थी।
10: ओके ओके ओके, तो मतलब ये तो स्कूल कॉलेज की बात रही
11: सर।
10: तो इस तरीके से वहाँ से आपकी शुरुआत रही। उसके बाद
11: संगम में सर मैं फर्स्ट प्राइज जीता 96-97 में। अग्रसेन पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। उस समय शिक्षा मंत्री थे हमारे यहाँ नरेंद्र कुमार गौर, वो मुझे प्राइज उन्होंने मुझे दिया था सर।
10: जी जी।
11: और 2001 में नीलम रिकॉर्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से मेरा फर्स्ट एल्बम सर रिलीज हुआ।
10: ओह ग्रेट।
11: ये दिल मांगे मोर,
10: तो
11: जैसा कि टाइटल है ये दिल मांगे मोर, उसमें था ये दिल मांगे मोर तेरा ही प्यार, ये दिल

0: दार, ये उसी गाने
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि आपकी एक शुरुआत रही, राइट?
0: ये एल्बम काफी सेल हुआ उस दौरान यूके एंड पाकिस्तान।
1: अच्छा, ओ ग्रेट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो मतलब यूट्यूब पे अगर लोग आज भी सर्च करें तो वो डेटा आपका मिल जाएगा।
0: मिल जाएगा,
1: वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद फिर शुरुआत क्या रही?
0: बेदर्द सनम मेरा एक एल्बम आया, काफी वो भी काफी चला था इस दौरान, स्टेज परफॉर्मेंस चलती रही। 2002 में ग्रेटर नोएडा आया, प्राधिकरण सब रजिस्ट्रार ऑफिस में काम स्टार्ट किया सर। 2004 में ग्रेटर नोएडा कार्निवल गायन में आई गॉट फर्स्ट प्राइज सर।
1: ओ ग्रेट।
0: उस समय ब्रजेश कुमार जी मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ थे, जो कि सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं। और 2006 में कमानी ऑडिटोरियम दिल्ली इंटर कॉमेट 2006 के नाम से मिस्टर ब्रायन मलिगन जो तब की नोट स्पीकर थे
1: जी
0: और क्रिएटर हैं मलिगन कॉन्सेप्ट के वर्ल्ड में
1: जी,
0: ही इज अ न्यूजीलैंडर, गाना सुनकर सर वो बहुत खुश हुए, मुझे स्टेज पर बुलाया और गले लगाया, जिसको डॉक्टर्स मिलने में पूरी लाइफ निकल जाती है फिजियोथेरेपी को लेकर के। वो क्रिएटर हैं बिकॉज वो मलिगन कॉन्सेप्ट के नॉन इन्वेसिव है,
1: मतलब वो एक खुशी का लम्हा था आपके लिए।
0: यस सर, मेरे लिए
1: वो किसी अवार्ड से कम नहीं था,
0: अवार्ड से कम नहीं।
1: तो मतलब इस तरीके से धीरे धीरे आपकी शुरुआत होती रही।
0: यस सर,
1: आप गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते रहे, अवार्ड आपको मिला, लोगों ने उस काम को सराहा। तो उसके बाद की अगर मैं
0: और सर मैं बीच में
1: जी जी
0: कहना चाहूंगा
1: जी,
0: इस हिंदी इंग्लिश पैरोडी सॉन्ग पर बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी सर।
1: कौन सा गुनगुनाएंगे आप हमारे श्रोताओं के लिए?
0: डेफिनेटली सर, इन कोलैबोरेशन बाय कैपरी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअल थेरेपी दिल्ली एंड एसपीजी इंस्टीट्यूट देहरादून ने संयुक्त रूप से सर इसको आयोजित किया था
1: जी।
0: श्रोताओं के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर, ये ट्रीटमेंट का एक पैटर्न है जो मोलिगन कॉन्सेप्ट जो हमें बताता है सिखाता है सब डॉक्टर्स को। ओ ना कर एक्टिव मूवमेंट ओनली दे दे ओवर प्रेशर बट ट्रीट

0: इट शुड बी सस्टेन.
1: क्या
0: फॉलो द ट्रीटमेंट प्लेन. बैक द मूवमेंट प्लेन.
2: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब. चलिए, ये जो बातों का सिलसिला है मिस्टर नरेंद्र, आपके साथ हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि आज आपसे आप ही की बात हो रही है, आपकी फील्ड की बात हो रही है. और ये तो एक शुरुआत रही कि जिस तरीके से आपने सिंगिंग के क्षेत्र में कब कदम रखा, कब अपने आप को आप आगे लेकर गए और क्या चल रहा है, इसके बारे में हम बहुत सारी बातें आपसे जानेंगे ज़रूर. यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप ही के अंदाज में हम म्यूज़िकल ब्रेक की ओर चलें. कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बेहद करीब, वो जो अक्सर आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहते हो.
0: नज़र

0: मत कहो।
1: चलिए सर, इस गाने को हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहते हैं। वाकई बहुत अच्छे गाने का आपने चुनाव किया है और इस गाने में बहुत अच्छा एक संदेश भी छुपा हुआ है। तो यही गाना लिसनर्स हम आपके लिए सिर्फ और सिर्फ सुनोशाद 90.8 FM पर। ये गाना आप सुनिए, गाइए, गुनगुनाइए और उसके बाद झट से फट से जुड़ जाएगा सुनोशाद 90.8 FM पर। मैं हूं गगन और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पेशे से सिंगर हैं और जिनका नाम है नरेंद्र कुमार सिंह। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनोशाद 90.8 FM।
2: नजर वो जो दुश्मन

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मैं हूं गगन आपके साथ, और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं, साथ ही साथ बहुत अच्छे सिंगर भी हैं। जिस तरीके से इन्होंने अभी ब्रेक पर जाने से पहले एक गाना हमारे लिए नजर किया, हमारे लिए गुनगुनाया, बुरा मत देखो बुरा मत सुनो बुरी आदत है। तो एक बार फिर से नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ये जो गाने जब आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो वाकई दिल को सुकून देते हैं ये गाने। इसमें एक मीनिंग है, कहीं संदेश छुपा हुआ है। तो क्या लगता है कि आज के समय में ये सारी चीजें कहीं ना कहीं गुम हो गई हैं?
1: यस सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे डीप ब्रीथ जैसा फील होता है, प्राणायाम
0: ग्रेट
1: जैसा फील होता है। मेरा पैशन भी है, शौक भी है, प्रोफेशन भी है। तो इस बीच वन इंडिया में गाने का मौका मिला, 2015 की बात है सर। और टाइम टू टाइम बीच में फिर अधिवक्ता दीवानी एवं फौजदारी न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अक्सर होली के आयोजनों में मेरा
0: गाने का मौका मिलता रहा।
1: डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह जो बीच बीच में रहे, श्रीमती विजय लक्ष्मी जी एवं डिस्ट्रिक्ट जज श्री अभय कुमार जी,
0: मतलब इस तरीके से आपको मौके मिलते रहे।
1: कोई भी वेलकम पार्टी है, कुछ भी है,
0: ओके ग्रेट,
1: कप्तान साहब, उधर डीआईजी साहब, ये सब
0: मतलब प्रशासन के बीच में आप जाते रहते हैं जब भी मौका मिलता है। घर की अगर मैं बात करूं तो घर में किस तरीके से माहौल रहा, ये आपने हमें बताया फादर के बारे में। कभी सपोर्ट मिला, या कभी ऐसा होता है कि पुराने समय की अगर हम बात करें, क्योंकि आज का समय अगर हम देखें सर, तो आज तो लोग जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप गाने के लिए ट्रेनिंग लीजिए, या एक म्यूजिक का गुरु हो आपके पास होना चाहिए। तो आपको घर से कैसा माहौल मिला, कितना सपोर्ट मिला सिंगिंग के क्षेत्र में, या बस आप सिंगिंग छोड़िए आपके बस की बात नहीं है?
1: हमारे कैसा रहा? ऐसा नहीं था सर। हमारे टाइम में हमारे फादर एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करते थे, और गाना उनको मतलब गाने के मामले में टू बी फ्रेंक में कहना चाहूंगा, वो बिल्कुल भी
0: सपोर्ट नहीं थे। क्योंकि पुराने समय में होता नहीं था, आज के समय में तो बहुत सपोर्ट करते हैं पेरेंट्स बच्चों को।
1: मेरी मदर हालांकि मुझे सपोर्ट करती थी, और इसी दौरान जहाँ जहाँ मैं सीखने भी गया तो वहाँ से मुझे गुरुओं से बहुत प्रेरणा मिली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और 10-12 इयर्स में हारमोनियम पे रियाज किया, 2002-2010 ये सब रियाज हुआ। उससे पहले भी मेरा चल रहा था हारमोनियम वगैरह, और मेरे कई गुरु रहे हैं, नारायण मास्टर जी रहे हैं इधर फिर, और गुरुओं का मुझे बहुत आशीर्वाद मिला, बल्कि कॉम्प्लीमेंट बहुत मिले कि हमारा ऐसा कोई शिष्य अभी इस तरह।
0: क्या कभी दिमाग में नहीं आया कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए, या कुछ घर की ऐसी परिस्थितियां रही कि जिसकी वजह से आप आगे जाने का मौका आपको नहीं मिला?
1: परिस्थितियां रही, हालांकि जब मैं ऑल इंडिया ट्रेकिंग एक्सपेडिशन सापुतारा में था, तो ब्रिगेडियर साहब मुझे सुन करके बोले, नरेंद्र कहां तुम्हें तो रेडियो में होना चाहिए।
0: आज आप रेडियो पर हैं, कह सकते हैं कपिल शर्मा जिस तरीके से पूछते हैं, क्या आपने सोचा था कि गगन के सामने आप बैठे होंगे कभी?
1: नहीं सोचा
0: जी।
1: कर्नल साहब मिस्टर एस एन थ्रॉट 92 में मुझसे बोले थे, इस दौरान जहां जहां मैं परफॉर्म किया, स्टेज पे मैं रहा हूँ अक्सर, फ्लावर शो ग्रेटर नोएडा, इधर फाउंडेशन डे दिसंबर में होता है, ग्रेटर नोएडा का कार्निवल होता है, उसमें फिर एज ए जज भी रहा हूँ, एज ए बीच भी फिलर भी रहा हूँ, स्टेज परफॉर्मेंस देता रहा हूँ, तो काफी
0: अप्रिसिएशन
1: मिली।
0: चलिए सर, ये
1: भोजपुरी के मुझे ऑफर थे दो।
0: अच्छा अच्छा।
1: फिल्म का भी ऑफर था, एल एच खान साहब प्रोड्यूसर डायरेक्टर सावन कुमार जी को लेकर के, वो लिरिक्स उन्होंने लिखे थे, उन्होंने मुझे कई बार दिल्ली जब यहाँ आते थे तो मैं मिलता था अक्सर उनसे, और अपॉर्चुनिटी थी, बट फैमिली का भी थोड़ा मुझे था, अपने आप को स्टैंड भी करना था।
0: यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बातें जो जारी हैं लगातार जारी रहेंगी, क्योंकि बातें थोड़ी ज्यादा सी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि आप ही की पसंद का एक और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब है, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनवाना चाहते हैं, और उसके बाद इस बात को हम कंटिन्यू आगे करेंगे।
1: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए,
0: क्या बात है,

0: साए।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना आपने चुना है यहाँ पर, और मैं समझता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं यकीनन इस गाने को गाएंगे, गुनगुनाएंगे, अगर गाड़ी में बैठे हुए हैं तो गाड़ी गाते झूमते मतलब अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और ये फिल्म जो है कलाकार फिल्म है, और नीले नीले अंबर पर वाकई बहुत अच्छे बोल है, किशोर कुमार साहब ने इस गाने को गाया है और इंदीवर साहब का लिरिक्स है, और साथ ही साथ मनोज कुमार के जो बेटे हैं इस फिल्म में वो एक लीड एक्टर में रहे हैं, साथ ही साथ यू कहें कि श्रीदेवी, और मतलब कंप्लीट एक पैकेज है। बहुत ही खूबसूरत गाना है सर, मेरे दिल के बेहद करीब ये गाना है। बस लिसनर्स इस गाने को गाइए, गुनगुनाइए, सुनिए, और उसके बाद हम आपको मिलेंगे यहीं, कहीं जाएगा मत। स्टे ट्यून्ड ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ आज खास मेहमान हैं नरेंद्र कुमार सिंह जी, जो कि पेशे से वकील हैं लेकिन बहुत अच्छे सिंगर भी हैं और कई एल्बम्स में इन्होंने काम किया है। खुद की एल्बम भी इन्होंने रिलीज की है,
1: ये दिल मांगे मोर,
0: बेदर्द सनम, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कुछ जो लिसनर्स हैं जरूर आपको फाइंड आउट करेंगे, पर देखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारी बातें आपसे हो रही थी कि अच्छी जगह आपको मौका भी मिला लेकिन घर की कुछ परिस्थितियों की वजह से आप आगे बढ़ नहीं पाए। तो इस समय की अगर मैं बात करूं, जो कहीं ना कहीं ख्वाब था वो जो दबा हुआ था उस वक्त, अगर आज आपके सामने मौके आते हैं तो कितना उसको आप कैश कर पाते हैं, कितना आप उसको भुना पाते हैं, या कहीं सोचा है कि नहीं मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, मुंबई की ओर रुख करना चाहिए?
1: अभी मेरा ये कंटिन्यू है म्यूजिक, और मेरा फेसबुक पेज मैं अभी बनाया हुआ हूँ तो उसमें लाइव मैं सैटरडे संडे आता रहा हूँ।
0: ग्रेट।
1: और कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो स्टेज परफॉर्मेंस मिलती हैं मैं उसको उनको करता रहा हूँ
0: जी।
1: और फैमिली के कुछ कारणों की वजह से बीच में मैं गैप हो गया था मेरा इसमें, तो मुझे अपने आप को स्टैंड करना था। आज मुझे लगता है कि मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ तो
0: ओके,
1: मैं इसको कंटिन्यू करूंगा सर।
0: वेरी गुड, वेरी गुड सर, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। कितना तालमेल बैठा पाते हैं वकालत करते वक्त, या यूं कहें कि आपका जो पेशा है, आप पेशे से वकील हैं और सिंगिंग के क्षेत्र में भी आप समय देते हैं और आप जैसे खुद कह रहे हैं कि जब भी मुझे मौका मिलेगा यकीनन मैं आगे बढ़ूंगा, तो ये जो तालमेल है बैलेंस कैसे रख पाते हैं, साथ ही साथ फैमिली भी?
1: बेसिकली मेरा रहता है सर, जो हमारा प्रॉपर्टी एक्ट है, आई एम नॉट ए लॉयर, आई एम नॉट ए क्रिमिनल एंड सिविल एडवोकेट। बेसिकली हमारा डीड्स का काम होता है, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क होता है, तो उसमें मेरे पास टाइम है, मैं मैनेज कर लेता हूँ। कई बार हमारे एलओटी भी जब पता उनको चलता है कि मैं सिंगर भी हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क भी देखता हूँ, डीलिंग भी मेरा व्यवसाय है थोड़ा बहुत, तो कहते हैं नरेंद्र जी क्या क्या हैं आप,
0: हरफन मौला है, शायद ही कोई फील्ड आपका बचा हो।
1: अच्छा गाते हैं
0: जी,
1: ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि मैं सब ये मैनेज
0: कर लेता हूँ,
1: इसमें 10 to 5 का मेरा कोई कंपल्सरी जॉब नहीं है।
0: ओके ग्रेट। फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता है? फैमिली में मैं बात कर रहा हूँ आपकी वाइफ का, बच्चों को तो मैं यहाँ देख रहा हूँ, बच्चे बड़े ट्रस्ट के साथ आए हुए हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके असिस्टेंट बने हुए हैं, कोई अनन्या को मैं देख रहा हूँ ये वीडियो बना रही हैं, और ये जो आपके छोटे सुपुत्र हैं इन्होंने अभी आपका टेक्निकल वाला पार्ट हमें यहाँ मैंने देखा कि उन्होंने असिस्ट किया, तो किस तरीके से माहौल मिलता है, किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपकी फैमिली?
1: सपोर्ट करते हैं लाइव में, मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, बैकग्राउंड देना, साउंड सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना, ट्रैक प्ले करना, ट्रैक सेलेक्ट करना, यूट्यूब से ट्रैक को सेलेक्ट करना, तो जो मुझे गाना होता है जो उस दिन मैं डिसाइड करता हूँ उन सबको डाउनलोड करके रखते हैं एंड देन फाइनली मैं उस पर गाता हूँ, तो इन लोगों की काफ़ी सपोर्ट रहती है। एंड वीडियो शूट करना, बीच बीच में वहाँ का एनवायरनमेंट देना उस तरह का लाइव का।
0: ओके तो और मैडम क्या सपोर्ट करती
1: है? मैडम की भी सपोर्ट मुझे रहती है,
0: तभी आप बाहर निकल पाते हैं। जी छोड़ो गाना बजाना है, अब तो उम्र निकल गई मियाँ आपकी। चलिए मैं बच्चों के बारे में जान लेता हूँ। अनन्या आप मुझे बताइए कैसा लगता है जब आप पापा को सपोर्ट करती हैं या पापा के साथ आप जाती हैं, क्या लगता है कि पापा को और आगे जाना चाहिए या आपको लगता है कि मुझे भी सिंगर बनना है?
2: हाँ जी अंकल, कई बारी होता है कि लाइक पापा एज अ जज होते हैं तो मैं जाती हूँ मोस्टली साथ में, या भाई चला जाता है वीडियो शूट या उनकी हेल्प के लिए, तो बहुत अच्छा लगता है अंदर से, लाइक उनकी लाइव परफॉर्मेंस होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है फेसबुक पे, तो भाई हेल्प करता है, मैं वीडियो शूटिंग में कभी कभी हेल्प करती हूँ। हाँ तो अच्छा लगता है ऑफकोर्स।
0: अच्छा हाँ। तो क्या कभी दिमाग में ख्याल आता है कि मुझे भी इस फील्ड में जाना है, मुझे भी चुनाव करना है? अभी स्टडी किस क्लास के स्टूडेंट है?
2: अभी 10th.
0: अच्छा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा शारदा यूनिवर्सिटी का मास कॉम का बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है. आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर हम जैसा टैलेंट भरा हुआ है. मास कॉम का रेडियो भी है, टीवी भी है. अगर आपको कभी लगता है तो जरूर, मैं तो कहूंगा कि एक बार जरूर यहाँ विजिट करेगा, यहाँ का माहौल देखेगा, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑब्वियस है कि लोग देख ही रहे हैं. और फैकल्टी से आप मिलिए, लोगों से मिलेंगे, स्टूडेंट्स यहाँ के बहुत अच्छी अच्छी जगह काम कर रहे हैं. तो मैं तो इस बात से यही कहूँगा कि आप ज़रूर सोचिएगा ज़रूर अगर आप पापा के साथ आते जाते, क्योंकि एक नो डाउट कि चकाचौंध की दुनिया है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, समझने को मिलता है. फिर लगता है कि नहीं यार, इसका एक कोर्स कर ही लिया जाए तो उसके बाद हम कुछ ज़रूर करेंगे, खास करेंगे. क्योंकि आने वाले समय में हम सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में जेवर की तरफ हमें फिल्म सिटी मिलने जा रही है. आपके छोटे भाई भी आए हुए हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा. क्या नाम है आपका?
3: My name is Aryan.
0: Aryan, Aryan, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है पापा के साथ जब आप जाते हैं या जबरदस्ती ले जाते हैं Aryan को? नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, मेरे को तो क्रिकेट खेलना है. कहाँ ले जाते हैं आप? हा?
3: नहीं अंकल, पापा बहुत अच्छे हैं.
0: बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड.
3: सपोर्ट करने में अच्छा लगता है.
0: आप पापा को सपोर्ट करने में अच्छा लगता है या पापा का सपोर्ट आपको अच्छा लगता है? दोनों को अच्छा लगता है. मम्मा के बारे में बताइए थोड़ा.
3: मम्मी भी बहुत सपोर्ट करती है पापा को.
0: चलिए, वेरी गुड सर, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी. मेरी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. यहाँ पर एक मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहूंगा, उसके बाद आखिर में एक छोटा सा संदेश आपसे जरूर लूंगा. तो कौन सा एक गाना है जो आपके और दिल के बेहद करीब है, जो हमारे लिसनर्स को आप सुनाना चाहते
1: हैं? बहुत सारे सॉन्ग्स हैं और इस दौरान तो क्या कहते हैं टाइम पर कुछ सिलेक्शन.
0: कोई बात नहीं, जो भी. हाँ प्लीज सुनाइए.
1: एक मैं रफी साहब का दो लाइन गुनगुना रहा हूँ.

0: जिंदगी
1: क्या बात,
0: कल हम कहां तुम कहां।
1: बहुत ही खूबसूरत गाना लिसनर्स, मैं आपके लिए नजर करने जा रहा हूं। आनंद बख्शी साहब के बोल, म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन साहब का म्यूजिक, सिंगर जिस तरीके से सर ने हमें बताया रफी साहब और साथ ही साथ आरडी बर्मन, और स्टार कास्ट की अगर हम बात करें तो रिश्ते में तो अमिताभ बच्चन साहब, और शान फिल्म ये रही 1980 में आई, और गाने के जो बोल हैं यम्मा यम्मा, ये गाना मैं आपके लिए प्ले कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपको उस प्रोग्राम को सुनकर मजा आ रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक देना ना भूलेगा। फिलहाल ये गाना सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सब खुश रहें, हेल्दी रहें, क्योंकि सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है। कहते हैं कि ईश्वर से जब आप कुछ मांगना चाहते हैं तो सबसे पहले यही मांगेगा, जो पहला सुख है वो है निरोगी काया। जब आप हेल्दी रहते हैं तो आप गाना अच्छा गा सकते हैं, दूसरा काम बेहतर कर सकते हैं, किसी काम को खूबसूरत अंजाम तक आप पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। फिलहाल मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है नरेंद्र कुमार सिंह, जो कि बहुत अच्छे सिंगर है, बहुत अच्छे इंसान है। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं इनके बारे में और इनकी फैमिली के बारे में, इनके इस पेशे के बारे में जानना चाहता हूँ, चूँकि रियलिटी शोज बहुत आ रहे हैं, लोग अपने आप को वहाँ लेकर जाने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों का जो एक यूँ कहें कि कंपटीशन है, लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं हताशा भी है, परेशानियां भी हैं कि जिनका सिलेक्शन नहीं होता। तो इस करंट सिनेरियो को किस तरीके से आप देखते हैं और इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं?
1: बच्चों को डेफिनेटली आई वुड लाइक कि मैं भेजना चाहूँगा, और कॉम्पटिशन काफ़ी ज़्यादा है आज की डेट में, और कंपटीशन होना भी चाहिए, और बच्चे प्रिपेयर करें उस हिसाब से आगे बढ़ें, और कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होना है। अपना जो शौक है उसको बनाए रखें एंड कंपटीशन से ना डरें। यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। इफ़ यू आर स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है।
0: क्या बात है। सो कहने का आशय लिसनर्स यही है कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं या आप ऑलरेडी पहले से ही काम कर रहे हैं तो डरने घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोशिश करते रहिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डर कर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर भी कहीं ना कहीं आपकी मदद ज़रूर करता है। तो फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है नरेंद्र सिंह जी, मुझे आपसे अनुमति लेनी होगी, लेकिन बस जाते जाते यही कहना चाहता हूँ आपसे बात करके, आपकी फैमिली से बात करके, कि जो बच्चे हैं यहाँ आए हुए हैं उनसे भी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से आपके

0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत।
1: याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। दिस इज फॉर यू ऑल फ्रेंड्स।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर नरेंद्र। लिसनर्स, इस गाने के साथ मैं आपसे अनुमति लेता हूँ, इजाजत लेता हूँ, और बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर नरेंद्र कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई।
1: थैंक्स अ लॉट।
0: सो फाइनली, आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बताएगा जरूर। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। फिलहाल वक्त का इशारा हो चुका है, मुझे लेनी होगी आपसे अनुमति। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: Before investments are subject to market risk. Read all skin-related documents carefully.
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे सुनीता, कैसी है मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी, बस ठीक है।
0: साफ सफाई का ध्यान रख रही हो?
1: जी दीदी, जैसा आपने बोला था, हर रविवार साफ सफाई की जिम्मेदारी लेते हैं। जहाँ कहीं भी पानी इकट्ठा देखते हैं, तुरंत साफ करते हैं, जैसे पानी का ड्रम, कूलर, फ्रिज की ट्रे
2: और आसपास कहीं भी टायर, नारियल, खाली बर्तन या किसी भी चीज में पानी जमा होने नहीं देते। दीदी
0: बहुत बढ़िया।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Suno Sharda.
1: जन जन का रखें ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। सिर्फ खांसी टीबी का लक्षण नहीं, टीबी के और भी लक्षण हो सकते हैं। बलगम में खून आना, थकान, पुरानी बीमारी, रात में पसीना आना, वजन में गिरावट, हाल में हुए शारीरिक बदलाव, शरीर के किसी भी हिस्से में गांठ होना, सीने में दर्द, बुखार, बलगम वाली खांसी, तो आज ही जांच कराएं। और अधिक जानकारी के लिए निश्चय संपर्क हेल्पलाइन नंबर 1800 11 4 6 टोल फ्री पर कॉल कर सकते हैं।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: अरे हमारे यहाँ कचरा तो काम वाली बाई और मम्मी उठाती है, ये अंकल कचरा क्यों उठा रहे हैं?
1: चमन, टीचर ने बताया था ना,
2: सभी काम सब लोग कर सकते हैं, पुरुष या महिला।
1: सफाई करना तो हम सभी का काम है। अपा, एक मिनट, मैं भी कचरा उठाने में आपकी मदद करूँगी।
3: ठीक है, चलो तो हो जाए कचरा पार्टी।
0: कचरा पार्टी?
4: बर्थडे पार्टी और घर से जो भी कचरा निकला है उसका सही उपयोग और प्रबंधन करना जरूरी है, तो हो जाए कचरा पार्टी।
2: कचरे का सही उपयोग और प्रबंधन मतलब
4: घर पे, स्कूल में या बाहर सड़क पर कचरा यूं ही नहीं फेंकना। ये कचरा हमारे वातावरण, जमीन, हवा, पानी को प्रदूषित करता है।
5: सड़क पर यहाँ वहाँ कचरा फैलाओ तो कितनी बुरी बदबू आती है।
0: और कचरे के आसपास चूहे, छुछुंदर, मक्खी मच्छर का घर बन जाता है और कीड़े भी लग जाते हैं
1: जो हमें बीमार कर सकते हैं, इसलिए कचरे को हमेशा कूड़ेदान में डालो।
3: रुको तारा, पहले ये देख लो ये कचरा किस तरह का है।
1: कचरा
3: ये देखो कि ये सूखा कचरा है या गीला कचरा।
4: जो आसानी से सड़ जाए वो है गीला कचरा, और जो ना सड़े या कई सालों बाद सड़े वो है सूखा कचरा।
1: ये सड़ सकता है, इसका मतलब ये गीला कचरा है।
3: बहुत अच्छे तरह, हमेशा सोचो कि कचरा दोबारा किस काम आ सकता है।
6: इस गीले कचरे को गमले में डाल के मिट्टी से ढक दें तो कुछ समय के बाद ये गीला कचरा जैविक खाद बन जाता है।
0: तो अंकल, क्या हम बचा हुआ हलवा भी गमले में डाल सकते हैं? ये भी तो गीला कचरा है।
3: नहीं चमन, पका हुआ खाना गमले में नहीं डालना, उसे तुम जानवरों को खिला सकते हो।
1: वाह, कचरा भी आएगा तुम्हारा काम। तो ये गया गीले कचरे में,
5: और मेरे पास है सूखा कचरा।
3: वाह वाह वाह वाह, तुम सब समझ गए। तो इस तरह गड़बड़ी सूखे और गीले कचरे को अलग कर लिया, और अब ऐसे कचरे की बात करते हैं जो हजारों साल तक सड़ते नहीं, और कुछ कचरे तो खतरनाक भी होते हैं।
1: हजारों साल तक सड़ते नहीं
0: और खतरनाक भी होते हैं,
3: जैसे प्लास्टिक जो हजारों सालों तक ऐसे ही रहेगा, या फिर टूटा शीशा, ब्लेड वगैरह। अगर इन्हें इस कचरे में मिला दिया और कहीं जानवरों ने खा लिया तो इसलिए कोशिश करो कि ऐसी खतरनाक चीजों को अलग से अखबार में लपेट कर बाजार जाते हुए कपड़े का थैला साथ ले लो, ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करना पड़े। और अगर करना ही पड़ जाए तो उसे बार बार इसी तरह से इस्तेमाल करो, ना कि कूड़े में फेंक दो।
0: बार बार इस्तेमाल,
5: जैसे इस गिफ्ट रैपिंग पेपर को हम अपनी नोटबुक या किताबों में कवर की तरह चढ़ा सकते हैं।
3: अरे ये क्या खुसर खुसर चल रही है।
1: अब आप देखिए अप्पा, हमारी कचरा कला।
0: हमने कचरे को दोबारा इस्तेमाल करके अपने वातावरण को बचाया।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: ओले ओले ओले ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
1: सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
2: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
3: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था, मुझे पूरा करना ही होगा।
1: लो माँ भी आ गई। माँ देखो तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
0: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
2: हाँ माँ जी।
3: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग 1.5 गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले।

फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ

0: या फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में, यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
5: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
4: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
5: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
4: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
5: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
4: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
5: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
4: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
6: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
7: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुषा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
6: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, आपके साथ। वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की हम कोशिश करते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से, जिसका नाम है सेहत सही तो लाभ कई। इसी के अंतर्गत बहुत सारी बातें होती हैं अलग अलग विषय के साथ, हर रोज हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। दोस्तों, सेहत है तो यकीन मानिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। आपके पास बहुत सारा रुपया है, लेकिन आपका स्वास्थ्य आपके साथ नहीं है तो आप सोचिए कि वो रुपया किस काम का। इसलिए अगर आप सबसे बड़े धनी बनना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। दोस्तों, मैं हूं गगन, आपके साथ, आपका मेजबान। और पिछले कार्यक्रम में हमने टीबी के इलाज के बारे में विस्तार से बात की थी। हमने जाना था कि टीबी का इलाज पूरी तरह संभव है। सरकार मुफ्त दवाइयां देती हैं और यहां तक कि दवा प्रतिरोधी यानी MDR टीबी का भी इलाज उपलब्ध है। लेकिन आज हम उस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, आगे की बातें करेंगे, क्योंकि सच कहें तो टीबी के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई केवल दवा शुरू करने की नहीं होती, बल्कि दवा को लगातार और सही तरीके से जारी रखने की होती है। बहुत सारे मरीज इलाज शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच में दवा छोड़ देते हैं, फॉलोअप जांच नहीं करवाते, कहीं बाहर काम पर चले जाते हैं, या फिर दवा से होने वाली किसी परेशानी के कारण खुद ही इलाज बंद कर देते हैं। और यही छोटी सी गलती कई बार बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे इलाज को बीच में न रोकने की, दवाओं के संभावित रिएक्शन की, अगर दवाओं से परेशानी हो तो क्या करना चाहिए, निश्चय जैसी सरकारी व्यवस्थाएं मरीजों की मदद कैसे करती हैं, और परिवार तथा समुदाय का सहयोग कितना जरूरी है। इन सब विषयों पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी अपनी स्वास्थ्य साथी टीकन देवी जी। स्वागत है टीकन भाभी, यानी कि लोग उनको टीकन भाभी कहते हैं और सम्मान के रूप में टीकन देवी कहते हैं, तो दोनों में कॉमन टीकन तो है। तो टीकन देवी भाभी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आरजे जी, सभी श्रोताओं को मेरा कोटी कोटी धन्यवाद। आरजे जी, पिछले कार्यक्रम के बाद मुझे कुछ लोगों ने फोन किए, अधिकांश लोगों ने एक ही बात कही, हमें पता है कि टीबी का इलाज होता है, लेकिन इतने महीने तक दवाई लगातार लेना आसान नहीं होता। और सच कहूँ, यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। इलाज शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इलाज पूरा करना उससे भी

0: ज्यादा जरूरी।
1: बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है कि आज की चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप कोई ऐसी कहानी सुनाएं जो इस विषय को समझने में मदद करे तो श्रोताओं को बात और अच्छी तरह से समझ में आएगी।
0: बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसी घटना बताना चाहूँगी जो कुछ साल पहले की है। पास के एक छोटे से कस्बे में लगभग 12 साल का एक बच्चा था जिसका नाम रवि था। रवि को लगातार बुखार रहता, वजन कम हो रहा था, खांसी भी लंबे समय से बनी हुई थी। जांच हुई तो पता चला टीबी है। परिवार घबरा गया लेकिन डॉक्टरों ने समझाया कि चिंता की बात नहीं है। इलाज शुरू हो गया। शुरुआती कुछ हफ्तों में रवि की हालत सुधरने लगी, बुखार कम हुआ, भूख लौटने लगी, घर वालों को लगा कि अब सब ठीक है। लेकिन 1.5 महीने बाद एक नई समस्या शुरू हुई। उसके शरीर पर लाल चकते निकलने लगे, उसे उल्टियां महसूस होने लगी और तो और उसे उल्टियां आने भी लगी। माता पिता बहुत डर गए। गांव में कुछ लोगों ने सलाह दी, दवा बंद कर दो, दवा के नुकसान हो रहे हैं। लेकिन संयोग से उस समय उसके पिता ने हमारे इसी कार्यक्रम सेहत सही लाभ गरीब का पूरा एपिसोड सुना था, जिसमें कहा गया था कि दवा से कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत स्वास्थ्य कर्मी या डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से दवा को बंद नहीं करना है। उन्होंने वही किया। अगले ही दिन बच्चे को अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने जांच की, दवाओं की समीक्षा की, आवश्यक बदलाव किए और कुछ अलग जांच भी किए। कुछ दिनों बाद स्थिति नियंत्रण में आ गई। आज रवि पूरी तरह से स्वस्थ है। सोचिए ना राज्य बाबू, अगर उसके माता पिता डर कर दवा बंद कर देते तो बीमारी दोबारा गंभीर रूप ले लेती। यानी समस्या दवा में नहीं है बल्कि समय पर सलाह ना लेने से पैदा होने वाली प्रॉब्लम यहाँ बड़ी दिखाई पड़ती है।
1: बिल्कुल सही कहा। दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि समय पर दवा जरूर लीजिए, लापरवाही मत बरतिए और खुद पर और खुदा पर यानी कि ईश्वर पर, परमात्मा पर विश्वास रखिए कि एक दिन आप जरूर स्वस्थ होंगे। तो ये कहानी सचमुच बहुत बड़ी सीख देती है दोस्तों। यानी दवा के दौरान कोई परेशानी हो जाए तो घबराना बिल्कुल नहीं है बल्कि तुरंत स्वास्थ्य प्रणाली से संपर्क करना है। लेकिन भाभी, सबसे पहले यही बताइए कि इलाज की निरंतरता यानी कंटिन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है?
0: देखिए आरजी जी, टीबी का जीवाणु बहुत चालाक होता है। जब मरीज दवा शुरू करता है तो कुछ ही हफ्तों में खांसी कम होने लगती है, बुखार कम होने लगता है, शरीर बेहतर महसूस करने लगता है और यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, लेकिन वास्तव में उस समय शरीर के अंदर मौजूद सभी जीवाणु समाप्त नहीं हुए होते हैं। लक्षण कम जरूर हो जाते हैं, बीमारी का पूरी तरीके से खात्मा नहीं होता है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों अलग अलग बातें हैं। इसीलिए राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम बार बार कहता है, डॉक्टर जितने समय तक दवा लेने को कहें उतने समय तक नियमित रूप से दवा लेनी जरूरी है। ये याद रखिए, आराम महसूस होना इलाज की सफलता का संकेत हो सकता है लेकिन इलाज पूरा होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं।
1: भाई बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने, लेकिन व्यवहार में अक्सर देखा गया है कि लोग इलाज बीच में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों?
0: कारण कई हो सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अब वे ठीक हो चुके हैं, कुछ लोग रोज दवा लेने से ऊब जाते हैं, कुछ लोगों को काम पर जाना होता है तो फॉलो अप नहीं हो पाता, कुछ लोग दूसरे राज्य और दूसरे शहर में काम करने चले जाते हैं तो भी दवा के हल्के दुष्प्रभावों से वो डर भी जाते हैं, लेकिन कुछ लोग समाज के डर और शर्म की वजह से भी इलाज को छुपाने लगते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार इन चुनौतियों को समझते हुए कई व्यवस्थाएं उन्होंने बनाई हैं, जिसमें मरीज को बीच में जो उसका इलाज चल रहा है वो बिल्कुल भी ना टूटे और उसे पूरी तरह टीबी से निजात मिले।
1: यही तो मैं पूछना चाहता था कि अगर कोई मरीज इलाज के दौरान गांव छोड़कर दूसरे शहर चला जाता है तब क्या होगा? क्या उसे फिर से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
1: हाँ।
0: ये बात खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों के लिए बहुत जरूरी है, जहां लाखों लोग रोजगार के लिए दूसरे जिले राज्य जाते हैं। आरजे जी, सरकार ने ट्रांसफर आउट की एक व्यवस्था बनाई है। अगर मरीज अपने स्वास्थ्य कर्मी या टीबी टीम को जानकारी देता है तो उसका पूरा रिकॉर्ड निक्षय प्रणाली पर अपडेट हो जाता है और नए स्थान पर भी वही इलाज जारी रखा जा सकता है। यानी केवल स्थान बदलने के कारण दवा बंद करने की जरूरत नहीं है। जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े और इलाज जारी रखिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि जहां जाएं वहां की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़िए और इलाज जारी रखिए। आपने निक्षय का नाम लिया, बहुत सारे श्रोताओं ने इसके बारे में सुना होगा लेकिन विस्तार से शायद नहीं जानते होंगे। मैं आपसे समझना चाहता हूँ निक्षय के बारे में।
0: निक्षय वास्तव में टीवी मरीजों के लिए सबसे जरूरी व्यवस्था है। यह एक डिजिटल प्रणाली है जिसके माध्यम से मरीजों का रिकॉर्ड, इलाज की प्रगति, फॉलो अप, सहायता और निगरानी की जाती है। इसके जरिए डॉक्टर ये देख सकता है कि मरीज की जो इलाज का अपडेशन है वो कहां तक पहुंचा है। अगर किसी मरीज को फॉलो अप जांच अभी बाकी है तो उसे याद दिलाया जा सकता है। अगर मरीज कहीं चला गया है तो उसका इलाज नए स्थान के साथ उसे जोड़ा जा सकता है। व्यवस्था के माध्यम से कई प्रकार की सहायता भी सुनिश्चित की गई है। यानी निक्षय केवल एक कंप्यूटर सिस्टम नहीं है बल्कि इलाज की निरंतरता बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण साधन है।
1: तो दोस्तों, अब बात करते हैं दवाओं से होने वाली प्रतिक्रियाओं की, यानी साइड इफेक्ट्स या रिएक्शन, क्योंकि यही वो विषय है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं।
0: और डर अक्सर जानकारी की कमी से पैदा होता है। आरजे जी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि टीबी की दवाएं कई महीनों तक चलेंगी तो उनके मन में एक चिंता रहती है, कहीं दवा से कोई परेशानी तो नहीं होगी। इसीलिए सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहूंगी कि अधिकांश टीबी मरीज बिना किसी गंभीर समस्या के अपना पूरा इलाज सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान कुछ दुष्प्रभाव या प्रतिक्रियाएं महसूस हो सकती हैं। लेकिन हाँ, कुछ मरीजों को इलाज के दौरान रिएक्शंस महसूस हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, किसी को शुरुआत में मतली या उल्टी की शिकायत हो सकती है, किसी का पेट भारी लग सकता है या जलन महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को भूख थोड़ी कम लग सकती है, कई बार त्वचा पर खुजली या लाल चकते भी दिखाई दे सकते हैं, कुछ मरीज कमजोरी, थकान या चक्कर की बात आने की भी शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जैसे आंखों और त्वचा का पीला पड़ना, पेशाब का रंग बहुत गहरा हो जाना, धुंधला दिखाई देना, हाथ पैरों में झंझनाहट या सुनपना महसूस होना, सुनने की क्षमता में बदलाव आना या व्यवहार और मानसिक स्थिति में कोई असामान्य परिवर्तन महसूस होना। ऐसे लक्षणों को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी, दुष्प्रभाव होने का मतलब ये नहीं है कि इलाज असफल हो रहा है, ना कि इसका मतलब ये है कि मरीज अपने मन से दवा लेना बंद कर दे। वास्तव में सबसे बड़ी गलती यही होती है। कई बार लोग किसी पड़ोसी, रिश्तेदार, अधूरी जानकारी के आधार पर दवा छोड़ देते हैं, जबकि यह कदम सही नहीं है। उन्हें तुरंत स्वास्थ्यकर्मी, आशा बहन, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या डॉक्टर को इसकी जानकारी देनी चाहिए। याद रखिए, इन सभी रिएक्शंस का इलाज किया जा सकता है। डॉक्टर जरूरत पड़ने पर जांच करेंगे, सलाह देंगे और जरूरी हुआ तो इलाज में उचित बदलाव भी करेंगे। लेकिन अगर मरीज बिना बताए दवा बंद कर देता है तो बीमारी फिर से सक्रिय हो जाएगी और इलाज मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मेरा ये संदेश है, दुष्प्रभाव छिपाए मत, घबराए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल लेना बंद मत करिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है।
1: देखिए साहब, टीकन देवी ने अर्थात हमारी टीकन भाभी ने बहुत डिटेल में विस्तार से बता दिया। आखिर के शब्दों को, आखिर की लाइनों को फिर से मैं दोहराना चाहूंगा। दुष्प्रभाव छिपाइए मत, घबराइए मत और अपने मन से दवा बिल्कुल मत रोकिए। समय पर जानकारी देना ही सुरक्षित और सफल इलाज की कुंजी है। यानी दवा से परेशानी हो तो पहला कदम दवा छोड़ना नहीं बल्कि डॉक्टर से बात करना है।
0: बिल्कुल, क्योंकि हर शिकायत गंभीर नहीं होती। कुछ दुष्प्रभाव अस्थाई होते हैं, कुछ का इलाज किया जा सकता है, कुछ मामलों में डॉक्टर दवा की समीक्षा कर सकते हैं, लेकिन यह निर्णय केवल डॉक्टर को ही लेना चाहिए, मरीजों को नहीं। याद रखिए, जल्दी जानकारी देना इलाज बचाता है, जबकि चुप रहना इलाज को खतरे में डाल सकता है।
1: बिल्कुल सही बात। इस बात को यूं ले सकते हैं कि अगर आपने डॉक्टर को सही समय पर बता दिया तो इलाज से आप बच सकते हैं, और जबकि आप चुप रह गए तो इलाज को खतरे में डाल सकते हैं। फॉलोअप जांचों की भी बात होती है टीकन देवी। कई लोग सोचते हैं कि दवा मिल गई तो अब अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप?
0: यही तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। इलाज केवल दवा खाने का नाम नहीं है। नियमित उसकी जांच, उसकी निगरानी होना बेहद जरूरी है। डॉक्टर जब फॉलोअप जांच के लिए बुलाएं तो जरूर जाएं। अगर बलगम का नमूना मांगे तो जरूर देना चाहिए। अगर कोई जांच लिखी जाए तो उसे जरूर कराना चाहिए। जांचों से पता चलता है कि दवा कैसा काम कर रही है और कैसा नहीं। कहीं अतिरिक्त सहायता की जरूरत तो नहीं है? यदि कोई समस्या है तो उसे टाइम से पकड़ा जा सकता है।
1: बिल्कुल भाभी, आपने पिछली बार MDR TB का जिक्र किया था, उसके संदर्भ में इलाज की निरंतरता कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी खास है, इसके बारे में भी बताइए भाई।
0: बिल्कुल, MDR TB यानी दवा प्रतिरोधी TB में यह और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ऐसे मामले में इलाज अपेक्षाकृत जटिल हो जाता है। दवाएं अधिक हो जाती हैं, निगरानी ज्यादा की जाती है और फॉलोअप भी अधिक होता है। लेकिन श्रोताओं, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि MDR TB का मतलब इलाज असंभव नहीं है। आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी, नए उपचार की टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों के ठीक होने की जो संभावना है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। 2014 से लेकर 2024 तक पहुंचने में जो टीबी की वजह से आज बेहतर जांच, बेहतर निगरानी और कई उपचार टेक्नोलॉजी के कारण मरीजों को ठीक होने की संभावना पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। बस शर्त एक ही है कि इलाज बीच में नहीं रुकना चाहिए।
1: और परिवार की भूमिका, कई बार मरीज अकेला पड़ जाता है, ये सब क्या है?
0: परिवार की भूमिका सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार भी मानती है कि टीबी का इलाज केवल मरीज नहीं करता, पूरा परिवार करता है। घर का कोई भी फैमिली मेंबर उसे दवाओं के बारे में याद दिला सकता है, फॉलोअप के साथ उसके साथ जा सकता है, लक्षणों पर नजर रखता है, मानसिक सहारा देता है और सबसे जरूरी बात, मरीज को यह महसूस कराता है कि वो अकेला नहीं है। कई बार दवा से ज्यादा असर एक सहारा देने वाला शब्द होता है।
1: और पोषण, इसके बारे में भी जानना या बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार भी आपने कहा था कि रिकवरी में भोजन की बड़ी भूमिका होती है, इसके बारे में बताइए प्लीज।
0: बिल्कुल, दवाएं बीमारी का इलाज करती हैं, लेकिन शरीर को ताकत भोजन देता है। इसीलिए सरकार निक्षय पोषण योजना जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से ये सहायता उपलब्ध कराती है। मरीज को नियमित भोजन लेना बेहद जरूरी है, जिसके अंदर दालें, अंडे, दूध, चना, सोयाबीन, हरी सब्जियां और पौष्टिक चीजें लेनी चाहिए, जो कि शरीर को रिकवरी में मदद करते हैं।
1: वाकई आपने बहुत अच्छी बात बताई, यानी कि खान पान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, लापरवाही नहीं बरतिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि आज की चर्चा को कुछ मुख्य संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहेंगे, यानी कि वो सार क्या होगा?
0: बिल्कुल, मैं ये सार 8 बातों को याद दिलाने से करूंगी। पहली, टीबी की दवा अपने मन से बंद ना करें। दूसरी, बेहतर महसूस होने पर इलाज पूरा हो गया ये उसका संकेत नहीं है। तीसरा, दवा में कोई भी असामान्य परेशानी हो तो तुरंत डॉक्टर को बताएं। चौथा, फॉलोअप और जांच इलाज का सबसे जरूरी पार्ट है। पांचवा, अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो स्वास्थ्य टीम को बताकर इलाज अपडेट कराएं। छठा, निक्षय और सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं इलाज की निरंतरता में मदद करती है। सातवीं, परिवार और उपचार सहयोगी मरीज की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आठवीं, एमडीआर टीबी भी इलाज योग्य है, बशर्ते मरीज नियमित रूप से कार्यक्रम से जुड़ा रहे।
1: बहुत सुंदर बात आपने कही टीका देवी, और मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। अगर रवि के माता पिता उस दिन डरकर दवा बंद कर देते तो शायद आज कहानी कुछ और होती, लेकिन उन्होंने सही समय पर सही कदम उठाया। यही समझ, यही जागरूकता और यही सतर्कता हर परिवार तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, याद रखिए, टीबी का इलाज केवल दवाओं से नहीं बल्कि धैर्य, नियमितता, परिवार के सहयोग और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े रहने से सफल होता है। आइए अंत में हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
0: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी तो भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई,
1: दवा चले नियमित हर दिन
0: तभी मिटेगा टीबी का चिन्ह।
1: परेशानी हो तो बात बताएं,
0: अपने मन से दवा ना छुड़ाएं।
1: क्या बात है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सच बात तो ये है कि सेहत सही तो लाभ कई। ये विशेष कार्यक्रम स्मार्ट के सहयोग से हमने सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से आप तक पहुंचाया। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये विशेष कार्यक्रम बहुत बहुत बहुत पसंद आया होगा। निश्चित तौर पर इस जानकारी से आप लाभ उठाएंगे, अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाएंगे और 120 जो कि हमारे शहर का एसटीडी कोड है आपको लगाना ना भूलेगा। नंबर जब आप डायल करें 120 40 60 205, इसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। 90.8 FM @sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं। वक्त का इशारा, हम होते हैं 9:11। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मुझे गगन को दीजिए अनुमति और मेरे साथ जुड़ी रही टीकन देवी के रूप में खुशबू जी। तो खुशबू अख्तर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आरजे बाबू।
1: सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: आप सुन रहे सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक मुहिम चला रहे हैं, स्वास्थ्य जन जागरूकता की मुहिम है जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। और इसी मुहिम के अंतर्गत आज हमारे साथ में हैं शिल्पा अरोरा जी, आप सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर हैं और आज हम आपसे जानेंगे टीबी के बारे में। तो इसके क्या कुछ लक्षण हैं और क्या कारण है?
1: टीबी के लक्षण हैं, लगातार अगर 2 हफ्ते से आपको खांसी आ रही है, खांसी के साथ बलगम आ रहा है और बलगम में खून भी आ सकता है, लगातार बुखार होना, खांसी का होना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, रात में पसीना आ जाना, ये सब टीबी के लक्षण होते हैं।
0: तो ये तो हो गए लक्षण। अगर इस तरह के लक्षण किसी को भी महसूस होते हैं या दिखाई देते हैं, परिवार में रहते हैं या कहीं अन्य जगह रहते हैं, तो सबसे पहले क्या उनको स्टेप लेना चाहिए?
1: सबसे पहले आके उनको बिस्रक के सरकारी अस्पताल में बलगम की जांच करानी चाहिए। बलगम की जांच से पता चल जाएगा कि आपको कौन सी वाली टीबी है।
0: तो अगर हम बिस्रक की बात करें तो यहाँ पर जो टीबी जांच की कौन कौन सी सुविधा है, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर अवेलेबल है?
1: यहाँ पे ट्रूनेट हो जाती है, बलगम की सारी टेस्टिंग जितने भी तरीके की है सब हो जाती है।
0: अब बात करते हैं कि मान लीजिए टेस्ट में पुष्टि हो जाती है, हम फेफड़ों की टीबी की खासकर बात कर रहे हैं, तो क्या फिर उसका उपचार होता है, कैसे शुरुआत होती है?
1: उसके बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है। जैसे ही पता लगता है कि इस पेशेंट को पल्मोनरी टीबी है, जैसे कि फैलने वाली टीबी जिसको हम बोलते हैं, तो सबसे पहले तो पेशेंट को मास्क लगाना चाहिए। जैसे ही आपको पता लगता है कि भाई आपको टीबी है तो मास्क का यूज़ करें। दूसरा, आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है, 168 डेज उनका ट्रीटमेंट चलता है। हर 2-2 महीने बाद उनकी टेस्टिंग होती है कि टीबी कितनी ठीक हो रही है। उनके जो परिवार के सदस्य हैं उनको भी मेडिसिंस दी जाती हैं बचाव के लिए, जिससे कि ये टीबी उनमें ना फैले। 6 साल से छोटे बच्चों की अलग मेडिसिंस चलती है, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों की अलग मेडिसिन चलती है, 14 से जितने एडल्ट्स हैं उनकी अलग मेडिसिंस चलती है। जितने भी उस पेशेंट के साथ मेंबर रहते हैं सबको बचाव की दवाई दी जाती है।
0: और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट को लगता है कि अब तो मैं ठीक हूँ, 1 महीना दवा खाई उसने और फिर बीच में उसने छोड़ दी दवा, तो क्या उसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है?
1: हाँ, बहुत नुकसान हो जाता है। अगर पेशेंट बीच में दवाई छोड़ देता है, प्रॉपरली नहीं लेता, तो नेक्स्ट टाइम जब उसको टीबी होती है वो बिगड़ा हुआ रूप लेके आती है, जिसको हम बिगड़ी हुई टीबी का नाम लें, उसको MDR टीबी हम लोग बोलते हैं, जो कि बहुत खतरनाक बीमारी होती है। इसीलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी टीबी हुई है, अगर आप उसको समय से आप इलाज लेंगे, प्रॉपर इलाज पूरा कोर्स करेंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे और आपको बिगड़ी हुई टीबी नहीं होगी। परिवार को तो अगर आपको बचाना है तो मास्क लगा के रखें, दूसरा अच्छे से कपड़े पहने, ठंड नहीं लगनी चाहिए ज़्यादा, गर्म पानी का यूज़ करें, हेल्दी डाइट लें, हरे पत्तेदार सब्जियाँ खाएं।
0: चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि जिनको टीबी है वो तो है ही गई, लेकिन बहुत बार हम भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, जो व्यक्ति को टीबी नहीं है पता नहीं, वहाँ पर कोई हो सकता है कि और टीबी का व्यक्ति हो, तो ऐसे में अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है?
1: मास्क लगा के आप मास्क का यूज़ करें अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी जा रहे हैं। और सबसे पहली बात, अपना स्टैमिना अच्छा रखें, खाली पेट ना ज़्यादा रहें, खाने पीने का ध्यान रखें, अपना हेल्दी डाइट लेनी चाहिए।
0: बिल्कुल।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। स्मार्ट संस्था के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ गई। इसी के अंतर्गत एक खास बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब भी हम सफर पर निकलते हैं या निकलने से पहले हर चीज की प्लानिंग करते हैं, नया स्कूटर या कार खरीदने से पहले हर विकल्प पर सोचते हैं, तो फिर अपने परिवार की योजना बनाने से पहले क्यों नहीं सोचते? ये तो जिंदगी भर का फैसला है। आपके परिवार को नियोजित रखने के लिए आपके पास गर्भ निरोधक के कई विकल्प हैं। जब आपके पास सही जानकारी होगी तभी आप अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर, अपने जीवन और अपने भविष्य के बारे में सही फैसला ले पाएंगे। तो झिझके नहीं, आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और अपने सभी गर्भ निरोधक विकल्प जानें। ये खास जानकारी सुनो शारदा 90.8 एफएम के माध्यम से स्मार्ट के सहयोग से सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत मैं आप तक पहुंचा रहा था। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM में, यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और

0: अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं बताइए। देखिए सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

10 से 19 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ एक नीली गोली। ये खून में आयरन की मात्रा बढ़ाए, दिमाग और शरीर एकदम सॉलिड बनाए। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये 5 जूस। वो कौन कौन से 5 जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए 5 हेल्दी जूस जरूर पिएं। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: Now listen girls, please understand, first things first, I only want a shirt.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: किसान मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मनपसंद कार्यक्रम खेत खलियान। और इस कार्यक्रम को आप सुनते हैं लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, देश की रक्षा में हमारे सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। गर्मी, बरसात और ठंड के मौसम में खुले आसमान के तले सीमा पर डटे रहते हैं और जरूरत पड़ने पर जान की बाजी लगा देते हैं। हमें अपने देश के सैनिकों पर गर्व है और इसी कारण हर देश प्रेमी सैनिकों के जज्बे को सलाम करता है और उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। सैनिकों के हौसले से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और करोड़ों लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और देश प्रगति कर रहा है। हमारे सैनिक सीमा की सुरक्षा के साथ ही देश पर आने वाली आपदा में भी पूरा सहयोग करते हैं। आपदा विशेषकर बाढ़ आने पर हमारे सैनिक जहां भी लगाए जाते हैं वहां लोगों की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पर लगा देते हैं और जाति धर्म से ऊपर उठकर संकट में पड़े हर व्यक्ति के जीवन की रक्षा के लिए जुट जाते हैं। हमारे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और साथ ही किसी भी बाहरी या आंतरिक खतरे से देश की रक्षा करते हैं। सैनिक देश के लिए अपनी जान भी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। सैनिकों का काम केवल सीमा पर रक्षा करना ही नहीं होता, बल्कि वे आपात स्थितियों में भी नागरिकों की मदद करते हैं और प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य संकटों के दौरान लोगों को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे सैनिक देश के रक्षक हैं और उनकी सेवाओं को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनके बलिदान को हमेशा याद रखना चाहिए और उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही देश के सैनिकों के सम्मान की, लेकिन किसान मित्रों यहाँ पर एक दिलचस्प बात आपको बताते हैं कि एक बार हमारे एक फौजी भाई और हमारे एक किसान भाई की मुलाकात होती है। दोनों में बातचीत होती है। एक तरफ हमारे जो किसान भाई हैं कह रहे हैं कि भाई हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, क्योंकि हम ना बारिश देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। उधर हमारे फौजी भाई ने कहा कि देखिए किसान भाई, हमारी जो मेहनत है वो आपसे ज्यादा है, हम दिन रात सीमा पर डटे रहते हैं, हम भी ना गर्मी देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना बाढ़ देखते हैं, ना सूखा देखते हैं और ना भूख की परवाह करते हैं, ना प्यास की परवाह करते हैं और अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सीमा पर डटे रहते हैं और पता नहीं कहां से गोली चल जाए उसका मुकाबला करने के लिए भी हम एकदम तैयार रहते हैं। इस तरह की नोकझोंक हमारे किसान भाई और फौजी भाई में हो जाती है। तो इसी मौके की रागनी किसान मित्रों आज आपको सुनवाते हैं। किस्सा रहेगा जय जवान जय किसान का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना।
1: हम देश के वीर किसान खेत में।
2: सही बात है, बिल्कुल

किसान भाई कहिए फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो बॉर्डर पर

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना से ये देशभक्ति रागनी, किस्सा था जय जवान जय किसान का। किसान मित्रों, देश के खाद्यान्न उत्पादकों की वृद्धि के लक्ष्य को पूरा करने के लिए और आप किसान भाइयों की उत्पादकता में वृद्धि तथा वित्तीय अवस्था सुधारने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चलाया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हमारे किसान भाइयों को बीज और खेती जैसी उपकरण संबंधी सुविधाओं को मुहैया कराया जा रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर ये मिशन भारत के किसानों को अच्छी पैदावार उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा होने के प्रयास में कार्यरत है। अब किसान मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस मिशन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य है चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करना, किसान भाइयों के लिए रोजगार के अवसर और अच्छी आय के अवसर देना, भारतीय कृषि व्यवस्था में सुधार करना और आगे बढ़ाना, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता में सुधार करने के लिए हर खेत को पानी और प्रति बूंद अधिक फसल के उद्देश्य को पूरा करना, किसानों की कार्यप्रणाली बेहतर बनाने के लिए पंप सेट, पानी के छिड़काव करने वाले यंत्र और पानी वाले पाइप वितरित करना। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के बारे में। और आइए अब आपको एक रागनी सुनवाते हैं। कलाकार हैं रविंदर खालौर और लोकेंद्र, किस्सा रहेगा श्रवण कुमार का। तो आइए सुनते हैं श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे श्रवण कुमार के किस्से से ये रागनी। कलाकार थे रविंदर खालोर और लोकेंद्र सिंह। किसान मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दुधारू पशु हमारे किसान भाइयों की आय को दोगुना करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ साथ पशु देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाते हैं। लेकिन कई बार पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जिसके कारण पशुपालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में पशुपालकों को पशुओं को रोगों से बचाने के लिए पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। पशुओं के प्रमुख संक्रामक रोगों के बारे में अगर हम बात करें तो वो हैं गलाघोटू, खुरपका, मुंहपका, लंगड़ी और तिल्ली या बागी रोग शामिल है। अगर इनका संक्रमण दिखे तो तुरंत किसान भाइयों, आपको पशुओं के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। किसान मित्रों, आपको बता दें कि खुरपका मुंहपका रोग, जिसको संक्षिप्त रूप में FMD कहा जाता है, ये बीमारी गाय भैंस में बड़ी शीघ्रता से फैलती है और ये बीमारी एक प्रकार के विषाणु से उत्पन्न होती है। ये रोग गाय भैंसों के अलावा भेड़ बकरियों और सूकरों में भी होता है। इस बीमारी में जीभ के नीचे मसूड़ों, थनों और खुरों में छोटे आकार के छाले फपोले पड़ जाते हैं। पशुओं को तेज बुखार होता है और जुगाली करना वो बंद कर देते हैं। दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। पशुओं के मुंह से लार गिरने लगती है। थनों पर छालों से कभी कभी थनेला बीमारी भी हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में ये रोग स्वस्थ पशु के बीमार पशु के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से और लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु बीमार पशु की लार, मुंह, खुर, थन में पड़े फपोलों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। अब किसान मित्रों, बात करते हैं कि बचाव कैसे किया जाए पशुओं का इन बीमारी से। तो बचाव के लिए 3 माह के ऊपर के सभी पशुओं का वर्ष में एक बार टीकाकरण जरूर करवाएं। ये रोग पशुओं को बरसात में अधिक होता है। इस बीमारी में पशु को तेज बुखार होता है और वो खाना पीना छोड़ देता है। उपचार के लिए आप अपने नजदीकी जो पशु चिकित्सक हैं उनसे सलाह लीजिए और पशु का उपचार करवाएं। लेकिन साल में 2 बार खुरपका मुंहपका बीमारी से बचाने के लिए अपने पशुओं का टीकाकरण जरूर करवाएं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना कि दुधारू पशुओं की देखभाल आप कैसे कर सकते हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अब किसान भाइयों, आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम के आखिर में एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का। तो आइए सुनते हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान और टीना पटौदी से ये रागनी, खिस्सा था हरिश्चंद्र तारामती का। और अब किसान मित्रों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम को यहीं पर संपन्न किया जाए, आपसे अनुमति ली जाए। तो इसी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स में जीरो लापरवाही। टीबी की जांच में देरी ना करें, बलगम की सही जांच कराएं। टीबी की दवाइयों के कोर्स को नियमित रूप से लें, नहीं तो इलाज मुश्किल हो जाएगा।
1: तो मतलब इस क्लास का सार है लापरवाही करना टीबी से सिर्फ आधी लड़ाई जीतना।
2: यस सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़े। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
1: भाई दहेज की आग सुनो, भाई दहेज

0: क्यों, कैसे परेशान नजर आ रही हो?
1: मैं आज मैं बेहद परेशान हूँ। क्यों? कि मेरी जो ये लड़की है नहीं, बड़ी उर्मिला,
0: अच्छा,
1: ये शादी के योग हो गई और मुझे इसकी तमन्ना बहुत ज्यादा है। इसकी शादी जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए।
0: तो तुम कुछ कहना चाहती हो?
1: हाँ।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: एक छोटी सी लापरवाही से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
2: ऐसे ही जब आपकी जिंदगी भर की कमाई कोई साइबर फ्रॉडस्टर लूट ले तो तकलीफ तो होगी ही। हमेशा याद रखें, अपनी बैंक डिटेल्स किसी के साथ शेयर ना करें।
1: साइबर फ्रॉड में पैसों की ठगी होने पर तुरंत इसकी शिकायत नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल www.cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन नंबर 1930 पर करें। इससे आपके पैसे रिकवर होने की संभावना बढ़ जाती है।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
4: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
5: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
6: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

मैं उन मातृ पिता से कैसे कहूंगा जिनकी बेटी आग में जल चुकी हूं, मैं इस बात को कैसे बताऊंगा। मेहरबानो, अब तो रामगढ़ी पहुंच गए।

प्रेमी सजनों, घर पहुंच गए जैसे ही देखा उर्मिला के पिता यादराम ने कि हमारे घर पुलिस वाले आए हैं। आखिर हमने कौन सी खता की है, सम्मान किया और कैसे बूझने लगे। मेहरबानों, बेटे वाले को भगवान का

प्रेमी दोस्तों, लड़की के माँ बाप ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारे घर पुरुष का आना आज कैसे हो गया, क्या हमने कोई खता कर दी।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
0: नहाने के लिए शावर की जगह हमेशा बाल्टी का उपयोग करें। अगर शावर उपयोग भी कर रहे हैं तो छोटे वाले शावर लगवाएं, जिससे पानी की कम खपत हो। शावर का उपयोग न करके हम 40 से 45 लीटर पानी हर एक मिनट में बचा सकते हैं। फ्लश में भी बहुत अधिक पानी उपयोग होता है, इसलिए ऐसा फ्लश लगवाएं जिसमें पानी का फोर्स कम हो। सुनो शारदा 90.8 FM और यूनिसेफ की तरफ से जनहित में जारी है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: बाल विवाह एक कुप्रथा है। ये प्राचीन काल में प्रचलित थी, जब लड़के लड़कियों का विवाह बहुत ही कम उम्र में कर दिया जाता था। हालांकि आज ये एक अपराध है, लेकिन आज भी काफी जगह लड़कियों और लड़कों की शादी कम उम्र में कर दी जाती है। भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 1 नवंबर 2007 को लागू कर दिया है। बाल विवाह केवल भारत में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में होते आए हैं और समूचे विश्व में भारत का बाल विवाह में दूसरा स्थान है। संपूर्ण भारत में विश्व के 40% बाल विवाह होते हैं और समूचे भारत में 49% लड़कियों का विवाह 18 वर्ष की आयु से पूर्व ही हो जाता है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय क्षेत्रों से अधिक बाल विवाह होते हैं। आंकड़ों के अनुसार बिहार में सबसे अधिक 68% बाल विवाह की घटनाएं होती हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम 9% बाल विवाह होते हैं। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि वो भारत, जो अपने आप में एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, उसमें आज भी एक ऐसी कुरीति जिंदा है। एक ऐसी कुरीति जिसमें दो अपरिपक्व लोगों को, जो आपस में बिल्कुल अनजान हैं, उन्हें जबरन जिंदगी भर साथ रहने के एक बंधन में बांध दिया जाता है और वे दो अपरिपक्व बालक शायद पूरी जिंदगी भर इस कुरीति से, उनके ऊपर हुए अत्याचार से उभर नहीं पाते हैं और बाद में स्थितियां बिल्कुल खराब हो जाती हैं और नतीजे तलाक और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। आइए ये जानना समझना अब जरूरी है कि बाल विवाह के वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाल विवाह होता है। भारत में बाल विवाह होने के कई कारण हैं, जैसे लड़की की शादी को माता पिता द्वारा अपने ऊपर एक बोझ समझना। आज भी ये देखा जाता है कि माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी को बोझ समझते हैं और जल्द से जल्द इससे निपटना चाहते हैं, जिसके कारण वो बिना ज्यादा सोचे समझे शादी करा देते हैं। शिक्षा का अभाव ये सबसे बड़ी समस्या है। रूढ़िवादिता का होना ये भी एक कारण है। इसी संदर्भ में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जो इस कुरीति के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाना चाहते हैं। ऐसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता राजस्थान के एक कस्बे से सरकारी स्कूल पहुंची, जहां से उसकी कहानी का सफर शुरू हुआ।
6: मैंने काफी बार बाल विवाह के बारे में सुना है, लेकिन 11 साल की प्रिया, उसने मेरी शंका को व्यक्तिगत बना दिया। अब आप सोच रहे होंगे प्रिया कौन है। मैं उससे राजस्थान के एक मांडवा गांव में एक सरकारी स्कूल में मिली थी। एक छोटी सी, नाजुक सी और कंधे पर एक भारी सा बस्ता टांगे हुए, थोड़ी सी घबराई हुई दूर खड़ी थी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि वो 6ठी कक्षा में पढ़ती है। वैसे तो आपने दुनिया में अगर देखा हो बाकी हिस्सों में, 6ठी कक्षा के बच्चे तो बहुत ही चुलबुले से होते हैं, मासूम से दिखते हैं, उनके स्वभाव में एक लड़कपन होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मैं प्रिया को देख रही थी तो उसका स्वभाव एक महिला की तरह लग रहा था। मैंने उससे पूछा, लेकिन उसने सामने से कुछ नहीं बताया क्योंकि वो थोड़ा शर्मा भी रही थी। लेकिन आसपास से मुझे पता चला कि उसकी बहुत जल्दी शादी होने वाली है। शादी होने वाली है। 11 साल की एक छोटी सी लड़की, कितनी छोटी है वो, लेकिन बहुत जल्द उसके 15 साल के एक लड़के से शादी होने वाली है। शादी के बंधन में बंधने वाले हैं दो ऐसे लोग जो एक 15 साल का है और एक 11 साल की। यूं तो ये ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ राजस्थान की। राजस्थान भारत का वो हिस्सा है जहां पर ये परंपरा है। जिस उम्र में बच्चों को खिलौनों से खेलना चाहिए उस उम्र में अक्सर यहाँ पर उन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। बेचारे मासूम, शादी का मतलब क्या है ये तो जानते भी नहीं, और लड़का और लड़की एक दूसरे को पति पत्नी मानने लग जाते हैं। एक बचपन का असली सार क्या होता है ये बेचारे तो अच्छे से जान ही नहीं पाते। कमाल की बात क्या है पता है कि कोई भी व्यक्ति इसके बारे में आवाज ही नहीं उठाता। सब देखता है, सब सुन रहा होता है, लेकिन ऐसे प्रतीत होता है जैसे वो अनजान है, आवाज ही नहीं उठाते। शायद ये सब माहौल की बात है, शायद यहाँ के लोगों के लिए आदर्श बन चुका है। लेकिन मैंने सोच लिया है कि मैं ये सब नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं ये सब होते हुए देख ही नहीं सकती। बच्चों के बचपन, उनकी मासूमियत को छीनते हुए क्या किसी को यहाँ पर जरा सी लाज नहीं आती? ये सोचते सोचते मैं उस दिन घर तो चली गई, लेकिन सारी रात सोचती रही कि कब सुबह हो और कब मैं स्कूल वापस जाऊं प्रिया से मिलने। सुबह हुई, मैं जल्दी से तैयार हुई और स्कूल पहुंची। जिस स्कूल में प्रिया पढ़ती थी वहां मैंने बहुत सी और लड़कियों को देखा जिनके माथे पर सिंदूर था। जब मैंने वहां के शिक्षकों से पूछा तो उन्होंने बताया कि 200 बच्चियों में से 40 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं या फिर उनका रोका हो चुका है। ये सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए कि एक शिक्षक ये बात कह रहा है। 7-7 8-8 साल की बच्चियों की भी उनके घर वालों ने शादी या रोका करा रखा है। ये सोच सोच कर मेरा दिल कांप रहा था कि जो बच्चियां अपने बस्ते का बोझ नहीं उठा सकती वो एक गृहस्थ जीवन का बोझ कैसे उठा सकती हैं। मैं वहां कुछ दिन के लिए रुक गई। मैं लगातार स्कूल आती रही लेकिन प्रिया ढंग से मुझसे बात नहीं कर पाई, वो मेरे सामने खुल ही नहीं पाई। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मैं प्रिया से बात करके रहूंगी। जैसे तो प्रिया के मन को किसी चीज ने बांध रखा था, वो किसी से खुलकर बात ही नहीं कर रही थी। यूं तो प्रिया थोड़ी बहुत बात तो मुझसे करती थी लेकिन मैं चाहती थी कि वो खुलकर मेरे से अपने दिल की बात करे, जिसके लिए उसकी झिझक मिटाना बहुत जरूरी था। और एक दिन आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। मैंने थोड़ी सावधानी बरती। यूं तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे लेकिन मैंने सोच रखा था कि मैं ज्यादा अजीब और बहुत सारे सवाल उससे नहीं करूंगी, कहीं वो घबरा न जाए या फिर उससे कोई बात बुरी ना लग जाए। लेकिन जब मैं उससे बातें कर रही थी तो धीरे धीरे उसके जवाब मुझे चौंका रहे थे। उसने सभी सवालों का जवाब बहुत ही समझदारी से दिया, बिना डरे हुए, जैसे कोई वयस्क बात कर रहा हो

0: ही उसके मन में किसी भी प्रकार की हिचक थी, न ही शादी के लिए कोई डर। ये सब शायद इसलिए था क्योंकि उसकी उम्र की बाकी लड़कियां भी शादी कर चुकी थी या करने वाली थी, तो उसे सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। या फिर उसकी माँ उसे रोज शादी को लेके उसे कुछ ना कुछ समझाती रहती होगी। शायद इसीलिए उसके मन से शादी के लिए हिचक या डर धीरे धीरे जाता रहा। मैं उसे ज्यादा समझने की कोशिश कर रही थी जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी इतनी जल्दी शादी होने वाली है, क्या तुम खुश हो? मुझे लगा था कि वो बोलेगी कि वो खुश नहीं है, लेकिन वो एकदम से हंस पड़ी और बोली, उसने कभी सोचा नहीं इसके बारे में। मुझे बस इतना पता है कि मेरी सारी दोस्तों की भी शादी हो चुकी है। ये सब सुनकर मेरा जो आश्चर्य था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। मुझे भी ये धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि यहाँ के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शिक्षकों के लिए, पढ़े लिखों के लिए या अनपढ़ों के लिए ये सब सामान्य सी बात है। शायद मैं ऐसी जगह से नहीं आई थी जहाँ पर ये सब होता हो, इसीलिए मुझे ये सब आश्चर्यचकित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर सब कुछ सामान्य सा ही लग रहा था। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इस बात का संकेत है कि ये जो कुरीति है ये धीरे धीरे इन लोगों के मन में इतनी रम गई है कि शायद अब ये इनके अभ्यास में हो गई है और शायद इनकी संस्कृति का एक हिस्सा बन चुकी है, जो कि वाकई घबराने वाली बात है। धीरे धीरे बातों ही बातों में उसने मुझे ये भी बताया कि उसकी चाचा की बेटी की तो 5 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, और वो ये बात इस तरह से हंस के बोल रही थी कि शायद वो ये कहना चाहती हो कि मेरी तो शादी बहुत देर में हो रही है। ये सब सुन के बस मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि कैसे इतनी बड़ी बात, जो कि पूरी दुनिया में इतनी शर्मनाक और इतनी ओछी समझी जाती है, कई जगह पे इसे अपराध भी माना जाता है, इस छोटी सी बच्ची के लिए और लगभग कहा जाए तो पूरे गांव के लिए ये इतनी मामूली सी बात है। लेकिन वहीं पर फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या इस चीज के लिए ये लोग खुद जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार तो हैं, लेकिन शायद अकेले जिम्मेदार नहीं है। सालों से इनके सामने ऐसा ही होता आया है, एक रिवाज सा बन चुका है। गरीबी और शायद शिक्षा का अभाव इसके मूल कारण है। यही सब सोचते सोचते और प्रिया से बातें करते करते पता ही नहीं चला कब स्कूल की घंटी बज गई और प्रिया एकदम से हाथ छुड़ा के अपना बस्ता लेकर भाग गई। ऐसा नहीं था कि वो पूरी तरह बदल चुकी थी, बचपना तो था, बस दबाने की कोशिश कर रही थी। शाम को जब मैं अपने रूम पे वापस गई तो बस दिमाग में प्रिया और प्रिया की बातें ही घूम रही थी। मैंने सोच तो रखा ही था कि ये सब मैं होने नहीं दूंगी, फिर अगले ही पल सवाल ये उठता था कि रोकूंगी तो रोकूंगी कैसे। वैसे तो उस गांव की हालत देख के ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कोई इस बारे में मेरी बात भी सुनेगा, लेकिन फिर भी बात तो करनी ही थी। लेकिन आज एक अच्छा काम तो किया मैंने। प्रिया से जाते जाते मैंने उसके घर का पता पूछ लिया था। वैसे तो मैं आज शाम को ही उसके घर जाना चाहती थी, लेकिन सोच रही थी कि ये सब बातें प्रिया के सामने करूं या ना करूं। फिर सोचा कि अगले दिन सुबह जाती हूं, जब प्रिया अपने स्कूल चली जाएगी। अगले दिन सुबह जब मैं प्रिया के घर पहुंची तो देखा कि वो एक मंजिल का छोटा सा मकान था जहां सामने कुछ भैंसे बंधी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने फिर से खटखटाया।
1: आ हाँ भाई, आ रहे, थोड़ी तसल्ली रख लो। कौन है?
0: क्या मैं प्रिया के पिताजी से बात कर सकती हूँ? मैं दरवाजे पे खड़ी थी और तभी प्रिया के पिताजी ने आके दरवाजा खोला। तब मैंने अपना परिचय दिया। जी मैं शालिनी, यहाँ पर घूमने आई हूँ, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकती हूँ?
1: हाँ हाँ मैडम जी, पहले आप अंदर तो आइए, तसल्ली से बैठिए, चाय पानी पीजिए, फिर बात करेंगे।
0: प्रिया के पिताजी ने मुझे बहुत ही आदर से अंदर बुलाया, कमरे में बिठाया और तभी मैं क्या देखती हूँ कि प्रिया पानी का गिलास लेकर आ रही है। ये क्या, मैं तो चाहती थी कि प्रिया जब स्कूल चली जाएगी तो उसके पीछे से उसके पिताजी से बात करूंगी, लेकिन प्रिया तो आज घर पे ही मिल गई। वो देखकर मुझे चौंक गई। बस यही मैं नहीं चाहती थी, लेकिन चलो अब प्रिया है तो क्या कर सकते हैं। उसने चौंक कर मुझसे बोला कि अरे आप तो वही है ना जो कल स्कूल में मिली थी। मैंने भी सिर हिलाकर कह दिया, हाँ मैं वही हूँ जो तुमसे कल मिली थी। प्रिया के पिताजी ने मुझसे पूछा कि क्या आप पहले से प्रिया को जानती हैं? मैंने कहा हाँ, मैं प्रिया से कल स्कूल में मिली थी और दरअसल मुझे आपसे प्रिया के बारे में ही बात करनी है। ये बात सुनकर प्रिया के पिता थोड़े सतर्क से होके बैठ गए। उन्हें देखकर मैंने भी खुद को थोड़ा सा गंभीर किया और उनसे कहा कि मैंने सुना है कि आप अपनी बच्ची की शादी करवाने वाले हैं। सुनते ही जैसे प्रिया के पिताजी के कान खड़े हो गए। उन्होंने बहुत ही गंभीर आवाज में मुझे कहा, जी हाँ आपने सही सुना है, मैं जल्दी ही प्रिया के हाथ पीले करने वाला हूँ। मैंने जब उनके मुंह से बात सुनी तो उस स्वर में मुझे महसूस हुआ कि वो मुझे एक चेतावनी सी दे रहे हैं। शायद वो मुझे ये कहना चाहते हैं कि हाँ मैं शादी कर रहा हूँ और इसमें मुझे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मैं थोड़ा घबरा गई थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने मन को संभालते हुए उनसे कह ही डाला कि जब से मैंने इस मासूम बच्ची की शादी के बारे में सुना है, तब से मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझसे रुका नहीं गया तो इसलिए मैं आपसे बात करने आ गई। ये सब सुनकर प्रिया के पिता थोड़े चकित तो हुए, लेकिन शायद उससे कहीं ज्यादा वो गुस्सा हो गए और अचानक ही गुस्से में बोल पड़े,
2: ये सवाल तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये हमारे घर का निजी मामला है, तुम इसमें दखल ना दो तो ही बेहतर है।
0: उनकी गुस्से भरी आवाज को सुनकर तो मैं घबरा ही गई। एक बार को तो मुझे लगा कि वो काफी नाराज हो गए हैं। मेरी ये बातें उनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, वो मुझे बार बार जाने को भी कह रहे थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आई हूँ तो थोड़ी कोशिश और करके देखूं। मैंने उनको बोला कि एक बार आप तसल्ली से बैठकर मेरी बात तो सुनिए। मैं समझाती रही और वो मना करते रहे। कुछ देर ऐसे ही चलता रहा, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल के बाद शायद उन्हें मेरी कुछ थोड़ी बहुत बात समझ में आई होगी और वो बात करने के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, बाल विवाह को लेकर जितना भी मेरा ज्ञान था सारा मैंने उन्हें सुनाना शुरू कर दिया। न जाने कितनी ही वजह गिनवा दी मैंने उन्हें। मैंने उन्हें बताया कि आज के जमाने में ये कितना बड़ा अपराध है, कितना भारी जुर्माना उन्हें देना पड़ सकता है, जेल की नौबत भी आ सकती है। मैंने यहाँ तक बोल दिया कि शादी के बाद प्रिया की शारीरिक स्थिति में बहुत असर पड़ेगा, मानसिक तौर पर वो बहुत कमजोर हो जाएगी। इतनी कम उम्र में एक मासूम सी बच्ची जो सिर्फ 11 साल की है, अभी तो जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, आप क्यों अभी से इस बच्ची के कंधों पर ये बोझ डाल रहे हैं? क्या उसका पति ये सोचेगा कि ये सिर्फ 11 साल की है? वो अपना हर तरह का हक उस पे जताएगा। यहाँ तक कि हमारा कानून हमें बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता कि हम 18 साल से पहले किसी भी लड़की की शादी करें। कानूनी सलाह के साथ साथ मैंने उन्हें थोड़ी सी डॉक्टरी सलाह भी दे दी। मैंने कोशिश की कि मैं उन्हें समझा सकूं कि हमारा समाज ऐसा नहीं है जहां पर शादी के बाद एक औरत अपने पति को ना कह सके। मैंने उन्हें बताया कि ऐसा करने से वो जल्दी माँ बनेगी, फिर उसके बाद उसके अंदर खून की कमी होगी, कितनी कम उम्र में ही वो उन सभी शारीरिक प्रताड़नाओं से गुजर जाएगी जिसके बारे में उसे ज्ञान तक नहीं है। वो कुछ देर चुपचाप मेरी बातें सुनते रहे, ध्यान तो दे रहे थे लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। न जाने कितने ही तथ्य, कितने ही उदाहरण मैंने उन्हें दे डाले, और जब मेरे पास कहने को कुछ नहीं रहा तो मैं चुप हो गई। और उसके बाद भारी भरकम आवाज में उन्होंने बस मुझे यही कहा,
1: अरे मैडम जी की करन लाग रही, कर ली ना अपने मन की बात, हारी हो गई ना, बस अब हमारे मन की बात सुनो। ऐसा है कि बच्चे तो हमारे हैं और हमें पाल लें, हमें ना समझ में आवे सरकारी बातें और ना ज्ञान की बातें। हम तो यूँ कह रहे हैं कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बच्चे हमारे हैं, आज नहीं तो कल शादी करनी है ना, और फिर आज कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है जी, और कब तक हम इस बच्ची को पालते रहेंगे, शादी तो करनी है भाई।
0: अरे कितना समझाया मैंने, क्या कुछ नहीं कह दिया, फिर भी ये जवाब। कुछ देर को तो मैं सुनकर शांत ही रह गई। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं और क्या समझाऊं इनको, कैसे बताऊं कि ये बच्ची पे अन्याय हो रहा है और आप इसके माता पिता हैं, आप अनदेखा नहीं कर सकते। और क्या कहा उन्होंने, हमेशा से होता आया है। जो चीज़ हमेशा से होती है वो जरूरी तो नहीं कि सही है। मैंने कोशिश की कि मैं वहाँ थोड़ी देर और रुकूं, उन्हें थोड़ा कुछ और समझा दूं, लेकिन शायद अब वो मेरे एक पल की भी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। मुझे वहाँ से जाना पड़ा। सारे रास्ते में यही सोचती आई कि क्या लड़की सच में एक बोझ है, माता पिता के ऊपर उसका अपना बच्चा एक बोझ कैसे हो सकता है। आज भी देखा जाता है कि माँ बाप अपनी लड़कियों की शादी को बोझ समझते हैं, जल्द से जल्द उसे टाना चाहते हैं। आज के जमाने में भी मैं ये देख रही हूँ कि लड़कियों की शादी उनके माता पिता पे बोझ है, जल्द से जल्द बस निपटाना चाहते हैं। बस सिर्फ इसी कारण आप एक बच्चे से उसका बचपन छीन ले, उससे उसका शिक्षा का अधिकार छीन ले, जीने का अधिकार छीन ले। इसी कश्मकश में मेरा सारा रास्ता निकल गया। मैं वापस अपने कमरे में पहुंची, बैग रखा। आज मैं शरीर से नहीं दिमाग से ज्यादा थक गई थी। सोचती आ रही थी कि समाज में जागरूकता फैलाने के लिए और क्या किया जाए, कैसे किया जाए। सरकार ने कानून बनाए हैं, लोगों के अधिकार बनाए हैं, फिर भी लोग डरते नहीं और गलती पे गलती करते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ रूढ़िवादिता के नाम पर। फिर मुझे एहसास हुआ कि हमारे माता पिता ऐसे क्यों नहीं है, मैंने सोचा। और शायद अब मुझे कारण पता चल गया था। कारण था शिक्षा। हमारे माता पिता शिक्षित थे, हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा फैलाने की, हमें जरूरत है ज्यादा से ज्यादा शिक्षा फैलाने की, लोगों को शिक्षित करने की, तभी वो शायद अपने अधिकार, अपने कर्तव्य समझ पाएंगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियाँ शायद तभी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगी। मुझसे तो जितना बन सका मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी मैं ये अन्याय होते देख नहीं सकती। अगर प्रिया के पिता मान गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फिर भी ये अन्याय हुआ तो मुझे जबरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, लेकिन शायद तब मेरे पास और कोई चारा भी नहीं होगा। लेकिन सोचने की बात यह है कि जागरूकता जबरदस्ती का नाम नहीं, लोगों की सोच में परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है।
3: यदि सरकार की नीतियों का सही से पालन हो और मीडिया द्वारा जितना हो सके जागरूकता अपने माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं, तो शायद भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न होगी। निम्न आर्थिक स्थिति, गांव देहात में चूंकि परिवार बड़े होते हैं, जिनमें आश्रित अधिक होते हैं और कमाने वाले कम होते हैं, इसलिए लड़कियों की शिक्षा को ज्यादा महत्व न देकर उनकी जल्दी शादी करवा दी जाती है, ताकि उनके लालन पालन का खर्च न उठाना पड़े। इसमें बेमेल की शादी के प्रसंग भी देखे जाते हैं, जो अक्सर दहेज और शादी के खर्च से बचने के लिए किया जाता है। कानून के अनुसार किसी भी बच्चे की निश्चित आयु से पहले यानी बच्चों के नाबालिग उम्र में उनकी शादी कराना बाल विवाह होता है। ये एक रूढ़िवादी प्रथा है जिसे बाल विवाह नाम दिया गया है। ये बच्चों के मानवाधिकारों को खत्म कर देता है, जिसमें उनके बचपन को उनसे छीन कर उन्हें ऐसे बंधन में बांध दिया जाता है जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। उन्हें यहां तक नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस प्रथा का शिकार अधिकतर कम उम्र की लड़कियां होती हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ कम उम्र की लड़की का विवाह कम उम्र के लड़के से कराया जाता है, बल्कि कम उम्र की लड़की का विवाह उनसे बहुत अधिक उम्र के बड़े लड़के से करा दिया जाता है। इससे उनके पूरे जीवन पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से गंभीर दुष्प्रभाव पड़ता है। सुनो शारदा 90.8 FM आपसे अपील करता है, प्रार्थना करता है कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को हम सब मिलकर रोकें।
4: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: लेकिन दोस्त, अगर ऐसे ही जिंदगी का साथ निभाते चले तो जिंदगी तुम्हारा साथ निभाना छोड़ देगी और अस्पतालों के चक्कर लगेंगे सो अलग।
1: जी हाँ, आप भी सचेत रहें और रहें धूम्रपान से दूर, क्योंकि हम सबका है यही सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी। सुनो
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: Hi, this is Shalmali Kholgade and you're listening to me on 90.8 FM, सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हो जाने पर 6 से 8 महीने का उपचार करवाना होता है, लेकिन अगर इलाज बीच में रोक दिया तो टीबी बिगड़ सकता है और ड्रग रेसिस्टेंट टीबी बन सकता है। DRTB तब होता है जब टीबी की कुछ दवा असर करना बंद कर दे। DRTB का इलाज कठिन और लंबा है, लेकिन मुमकिन है। आधुनिक जाँच और इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त उपलब्ध है। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: महावारी संबंधित कुछ गलत फहमियां हैं या यूं कहें कि कुछ भ्रांतियां हैं, आइए उनको दूर करते हैं और जानते हैं। लोगों में महावारी को लेकर कई गलत भ्रांतियां और गलत फहमियां होती हैं, जैसे कि महावारी गंदी और हर महीने होने

0: वाली शर्मनाक घटना है।
1: माहवारी के समय सभी लड़कियों के लिए सभी गतिविधियों से दूर रहने का समय होता है।
0: माहवारी का समय स्कूल न जाने का समय है।
1: माहवारी एक व्यक्तिगत मुद्दा है जो केवल महिलाओं से संबंधित है।
0: याद रखें, मासिक धर्म एक सामान्य शारीरिक घटना है।
1: माहवारी एक नियमित होने वाली प्रक्रिया है और यदि लड़कियां इसमें सहज महसूस करती हैं तो वे सभी प्रकार की गतिविधियों में भाग ले सकती हैं।
0: जब तक तेज दर्द या गंभीर परेशानी न हो तब तक माहवारी का समय स्कूल या अन्य गतिविधियों से छुट्टी का दिन नहीं होना चाहिए। स्कूल में भी उनके लिए पैड बदलने के साफ और सुरक्षित जगह उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है।
1: बहुत से लोगों के पास उनके माहवारी प्रबंधन के लिए आवश्यक संसाधन, उचित स्वच्छता और सहयोग नहीं होता है। भारत में लड़कियां हर महीने अपनी माहवारी की वजह से स्कूल में एक या दो दिन अनुपस्थित रहती हैं, जो कि उनकी शिक्षा और भविष्य को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है।
0: माहवारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो एक गंभीर विषय है। जी हाँ, पेशाब, जिसे हम कहते हैं मूत्र। अगर इसमें खून आ रहा है तो आप एक परेशानी से जूझ रहे हैं। एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या समस्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि पेशाब में खून आने की ज्यादातर वजह जैसे कुछ दवाएं, छोटी मोटी चोटें या गुर्दे की पथरी, ये सारी चीजें अस्थाई होती हैं, जिनका लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ता। ज्यादातर लोगों के लिए मूत्र पथ का संक्रमण इलाज योग्य होता है। अगर जल्दी पता लगा लिया जाए तो मूत्र पथ के कैंसर का भी अच्छा पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मूत्र में रक्त दिखाई देने के अधिकांश मामले आपातकालीन स्थिति नहीं होते हैं। हालांकि यदि आप चक्कर आना, पेशाब करने में असमर्थता या अत्यधिक दर्द जैसे लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। लेकिन जिन लोगों के पेशाब में खून की अधिक मात्रा आ रही है, पेशाब करते समय अधिक दर्द हो रहा है, पेशाब करने में कठिनाई या अक्षमता महसूस हो रही है, तो उन्हें उसी समय डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है कि धैर्य रखना क्यों जरूरी है। अगर आप जिंदगी में धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर तमाम बीमारियों से आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि धैर्य मन का वो गुण है जिसके होने से मनुष्य विपत्ति के समय भी विचलित नहीं होता है। धैर्य कठिन परिस्थितियों में भी व्यक्ति की सहन शक्ति की अवस्था है। ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के मन को क्रोध अथवा खीज जैसी अवगुणों के प्रभाव से बचाती है। धैर्य के तीन गुण क्या हैं? एक्सपर्ट कहते हैं कि आत्मनियंत्रण, स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने और बिना किसी शिकायत के इसे सहन करने में सक्षम होना। विनम्रता, ये स्वीकार करना कि आप किसी और से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है कि आपको इंतजार न करना पड़े। और उदारता, दुनिया को देखकर मुस्कुराना तब भी जब ऐसा लगे कि ये आपके खिलाफ साजिश रच रही है। तो ये खास जानकारी आपको कैसे लगी बताइएगा जरूर। ऐसी खास अपडेट्स के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, मैं विमलेश।
3: और मैं अजीत। नमस्कार,
2: स्वागत है आप सबका उमंग में। सुनते रहिए उमंग के साथ और लोगों को भी बताइए हमारे शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के बारे में उमंग के साथ। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है
3: कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत, गुरशब्द और विजेंद्र कुमार जयजान। आप सबने मिलकर लिखा है
2: ज्योत से ज्योत जगाते जाएं तो रोज दिवाली है, रोशन राह बनाते जाएं तो फिर रोज दिवाली है।
3: क्या बात है, प्रेम प्रीत की फुलझड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है, दिल से दिल की जुड़ी कड़ी हो तो फिर रोज दिवाली है।
2: क्या बात है, रोज दिवाली है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
3: वन बघेरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार सारवा,
2: सांचौर राजस्थान से नासिर खान,
3: शामली उत्तर प्रदेश से मोहम्मद आजम,
2: वाराणसी से जेम्स पांडे।
3: धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेश के लिए। यदि किसी का नाम रह भी गया हो तो चिंता ना करें, अगले प्रसारण में आ जाएगा। और हाँ,
2: आपकी हमारी मनचाही श्रृंखला ये भी जानिए।
3: ये भी जानिए श्रृंखला में श्रोताओं आज हम अंतरिक्ष के एक अद्भुत रहस्य के बारे में बातचीत करेंगे। श्रोताओं यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर आग जलने या जलने की प्रक्रिया में सबसे अधिक जरूरी क्या है, तो सबका जवाब होगा ऑक्सीजन।
2: बिल्कुल श्रोताओं, दहन की प्रक्रिया में सबसे जरूरी शर्त है ऑक्सीजन का होना।
3: जी,
2: लेकिन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, लेकिन अंतरिक्ष में हवा और ऑक्सीजन नहीं है। जी हाँ श्रोताओं, दहन की प्रक्रिया में सबसे जरूरी शर्त है ऑक्सीजन का होना, लेकिन हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, लेकिन अंतरिक्ष में हवा और ऑक्सीजन नहीं है। तो अजीत जी, फिर एक प्रश्न उठता है कि सूरज और तारे बिना वायु या ऑक्सीजन के कैसे जलते हैं? कहा जाता है कि सूरज आग का गोला है।
3: हाँ विमलेश जी, कहते तो हैं सूरज आग का गोला, ये प्रश्न सच में बड़ा रोचक है। पृथ्वी पर श्वसन और दहन या जलने की प्रक्रिया में शामिल है ऑक्सीजन।
2: जी,
3: लेकिन अंतरिक्ष में सूर्य और तारों के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती।
2: लेकिन ऐसा क्यों, ये हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए।
3: श्रोताओं, असल में सूरज और अन्य तारों के जलने का मतलब है नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया।
2: जी,
3: सूरज और तारे नाभिकीय संलयन के जरिए ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न करते हैं। और आगे क्या होता है?
2: इस प्रक्रिया में परमाणु एक दूसरे के साथ मिलकर हीलियम के परमाणु बनाते हैं और इस दौरान बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सूरज और तारों की रोशनी और गर्मी का कारण बनती है।
3: जी हाँ श्रोताओ, ये गैसीय द्रव्य है और उनके अंदर हो रही संलयन या फ्यूजन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के बिना भी काम करने की पूरी क्षमता होती है। दरअसल ये प्रक्रिया हवा और ऑक्सीजन से पूरी तरह से स्वतंत्र है।
2: तो श्रोताओ, आज हमने जाना कि पृथ्वी पर आग तब जलती है जब ऑक्सीजन की मौजूदगी होती है और ये एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा नहीं होता, वहाँ रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती, लेकिन नाभिकीय और न्यूक्लियर प्रक्रिया होती है। यही कारण है कि सूरज और तारे बिना ऑक्सीजन के भी जलते रहते हैं। तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये विज्ञान वार्ता?
3: श्रोताओं, हमें आशा है कि हमारी आज की ये विज्ञान वार्ता आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब तैयार हो जाइए आज के प्रश्न के लिए। हमारा आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से,
2: अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के सूरज और तारे कैसे जलते हैं और उनमें दहन की प्रक्रिया कैसे संभव होती है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के सूरज और तारे कैसे जलते हैं और उनमें दहन की प्रक्रिया कैसे संभव होती है?
3: श्रोताओं, आप हमें उत्तर भेज सकते हैं 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है, और
2: audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। इस पर भी आप अपना संदेश भेज सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं भारत के महान वैज्ञानिक सर वेंकट रमन के जीवन और वैज्ञानिक उपलब्धियों पर आधारित ये कार्यक्रम,
3: जो हमें बताएगा विज्ञान के एक क्षेत्र में भी भारत की प्रतिष्ठा किसी से कम नहीं है।
4: ये कहानी वेंकट रमन रामकृष्णन की है, जो भारत में तमिलनाडु के चिदंबरम शहर से शुरू होकर इंग्लैंड में कैम्ब्रिज की प्रसिद्ध मेडिकल रिसर्च लेबोरेटरी तक पहुंचती है।
5: भौतिकी विज्ञान की लंबी शिक्षा के बाद जीव विज्ञान को शोध का विषय चुनना उनके वैज्ञानिक जीवन का एक निर्णायक मोड़ था। भौतिकी विज्ञान में PhD करने के बाद उन्होंने जीव विज्ञान की ओर कदम रखे, जिसमें दिनों दिन उनकी रुचि बढ़ती जा रही थी।
4: यहाँ तक कि कोशिका में प्रोटीन निर्माण करने वाले कारखाने यानी राइबोसोम जैसे जटिल विषय को उन्होंने अपने शोध का विषय बनाया। अत्यंत जटिल शोध प्रयासों से उन्होंने राइबोसोम की संरचना का परत दर परत रहस्योद्घाटन किया, जिसने उन्हें नोबेल पुरस्कार का हकदार बनाया।
5: राइबोसोम क्या है,
4: उसका हमारे शरीर में क्या योगदान है,
5: उसकी संरचना क्या है,
4: इस पर वेंकटरमन रामाकृष्णन ने क्या कार्य किया,
5: ये सवाल जितने जटिल हैं उतने ही रुचिकर भी। विज्ञान जगत से जुड़े लोगों की इसमें अपार जिज्ञासा जागृत हो चुकी है।
4: इसका श्रेय प्रोफेसर वेंकटरमन रामकृष्णन को जाता है। उनके इस शोध ने अनेक शोध विषयों के रास्ते खोल दिए।
5: कई बार वेंकटरमन रामकृष्णन स्वयं छात्रों से मिले। वे सरल शब्दों में छात्रों और युवा वैज्ञानिकों को ये बताने का प्रयास करते हैं कि जीवंत कोशिका में राइबोसोम कैसे और क्या काम करते हैं।
6: Good morning, everybody.
7: All right, sir. Good morning, sir.
8: Good morning,
9: sir. Good morning, sir.
6: So, can we start?
7: जी सर,
10: yes, sir. Sure, sir.
6: जी.
7: सर, मेरा एक सवाल था. सर, हमने जीव विज्ञान में पढ़ा है कि कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम नामक एक आणविक संरचना होती है।
6: जी.
7: कहीं कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपकी हुई और कभी कभी साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरती हुई।
6: तो आपको इतना तो पता है कि राइबोसोम कहाँ मौजूद होते हैं?
7: जी
6: देखिए, बैक्टीरिया से लेकर मनुष्य के शरीर तक सभी जीवों की सभी कोशिकाओं में ये मौजूद होते हैं।
7: जी सर, जी सर।
6: और इनके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता।
11: यस सर।
6: देखिए, कोशिका के हर कार्यकलाप के लिए प्रोटीन की अहम भूमिका होती है।
11: ओके।
6: प्रोटीन अलग अलग प्रकार के 20 एमिनो अम्लों के जुड़ने से ऐसे ही बनते हैं जैसे जैसे मोतियों से माला। एक प्रोटीन 10 से लेकर 10,000 एमिनो अम्लों की श्रृंखला से बनी हो सकती है। 10,000 से भी अधिक प्रोटीन मिलकर मानव शरीर का निर्माण करते हैं और रासायनिक स्तर पर उनका संचालन।
8: जी सर।
11: ओके।
6: देखिए, इस बात का अब धीरे धीरे खुलासा हो चुका है कि आरएनए के और भी कार्य हो सकते हैं, पर अब यह भी प्रमाणित हो चुका है कि ज्यादातर कार्य प्रोटीन के द्वारा संपन्न होते हैं। मसलन रक्त में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं।
11: ओके।
6: हमारी आंखों में प्रकाश रोडोप्सिन नामक प्रोटीन के द्वारा संप्रेषित होता है। संक्रमण के समय जो एंटीबॉडीज बनती हैं, वो प्रोटीन
11: है। हाँ, यस सर।
6: जी, आपकी त्वचा मूलतः कोलेजन नामक प्रोटीन ही तो है। सो दैट्स इट।
11: थैंक यू सर।
6: एनी अदर क्वेरी?
12: यस सर, यस सर। सर, कोशिका के अंदर राइबोसोम की खोज के बारे में कुछ बताइए प्लीज।
6: देखिए, सन 1956 में रोमेनिया में जन्मे अमेरिकन रसायन शास्त्री जॉर्ज एमिल पलाडे ने प्रोटीन निर्माण करने वाले इन कोशिका कणों को राइबोसोम नाम दिया।

0: अच्छा जी, इस शोध कार्य के लिए उन्हें सन 1958 का नोबेल पुरस्कार मिला। ये आरएनए और प्रोटीन अणुओं को मिलाकर बनते हैं।
1: इट्स अमेजिंग टू नो हाउ दे लुक।
0: देखिए, हर एक कोशिका में हजारों राइबोसोम होते हैं। सभी प्रजातियों के राइबोसोम दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं। इनमें से एक बड़ी और एक छोटी उप इकाई होती है। बड़ी उप इकाई छोटी उप इकाई से लगभग दुगने आकार की होती है।
1: रियली?
0: जी। और एक राइबोसोम का जो आकार है वो लगभग 25 नैनोमीटर होता है।
1: 25 नैनोमीटर? गॉश, सो स्मॉल।
2: सर, एक नैनोमीटर तो एक मिलीमीटर का 10,00,000वां हिस्सा होता है।
0: देखिए, ये नन्हे काम करने वाले कण बहुत ही सूक्ष्म आकृतियां हैं।
1: बट सर, हाउ कॉम्प्लेक्स इज दिस स्ट्रक्चर?
0: देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका की बड़ी उप इकाई में 3 आरएनए और 49 यानी 49 प्रोटीन के अणु कण होते हैं, और छोटी उप इकाई में एक बड़ा आरएनए और लगभग 33 प्रोटीन के अणु कण होते हैं।
1: ऑलराइट सर।
0: कुछ राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के तंत्र में चिपके रहते हैं और कुछ साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं।
3: वेरी इंटरेस्टिंग, टाइनी वर्कर सर।
0: यस, एक्सपेरिमेंट्स हैव प्रूव्ड इट। अणुजीव विज्ञान के शोध बताते हैं कि राइबोसोम ऐसे संयंत्र हैं जो हमारे गुण सूत्रों से संदेश लेते हैं और इनमें से निर्देश लेकर प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। यानी आप यूं कह सकते हैं कि गुण सूत्रों में प्रोटीन निर्माण के संदेश होते हैं और राइबोसोम उन संदेशों का इस्तेमाल कर प्रोटीन बनाते हैं।
4: सर, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स रिडल।
0: यस, श्योरली। यहां मैं जीव विज्ञान के अनुवाद की केंद्रीय समस्या का जिक्र करना चाहूंगा।
4: ओके।
0: देखिए, न्यूक्लिक अम्ल की भाषा से प्रोटीन की भाषा को बदलने के लिए अनुवाद की प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले फ्रांसिस हैरी कॉम्प्टन क्रिक ने इस बात का सुझाव रखा। उन्होंने कल्पना की कि आरएनए एक अडैप्टर है जो कुछ न्यूक्लियोसाइड से बना होता है। वो मैसेंजर आरएनए पर से गुजरते हुए एक जीव चेन की तरह एमिनो अम्लों की श्रृंखला को जोड़ता जाता है।
5: परंतु सर, डीएनए और राइबोसोम में क्या संबंध है?
0: ये दोनों अणु कोशिका में न्यूक्लियर आवरण के बाहर और अंदर दोनों जगहों पर होते हैं और एक दूसरे से उनमें किसी प्रकार का संपर्क नहीं होता। जीन यानी गुणसूत्र की एक प्रति डीएनए द्वारा निर्मित होती है।
5: जी।
0: संदेश वाहक एमआरएनए राइबोसोम के उप अणु द्वारा अनुवादित होता है, प्रोटीन के लिए एक प्रकार के खाके का काम करता है। एमआरएनए और राइबोसोम के दोनों उपकरण एक इकाई की तरह इकट्ठे काम करते हैं। एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइडों में छुपे तिकड़े कोड की गुप्त भाषा को पढ़ते हैं। तो इस तरह जीवन की बुनियादी जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं की तस्वीर उभरती है, जहां संदेश डीएनए से शुरू होकर आरएनए तक पहुंचते हैं और इस प्रकार वो एंजाइम और प्रोटीन के रूप में उभरते हैं। राइबोसोम के छोटे उपकरण एक ऐसा आणविक स्केल है जो इसका निरीक्षण करते हैं कि कोड और उनके प्रतिबिंब कोड एक दूसरे से ठीक ठीक मिलते जुलते हैं। अगर उनमें कोई त्रुटि होती है तो ट्रांसफर आरएनए वहां से हट जाते हैं।
3: जी सर, लेकिन सर इसके बाद क्या होता है?
0: देखिए, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भाषा में जीन डिजिटल है।
4: डिजिटल?
0: जी जी। इसके अनुसार डीएनए डिजिटल सूचना को संजोने का जैसे एक टेप रिकॉर्डर हो और आरएनए उस सूचना को प्ले करने का जरिया है।
5: अरे वाह सर।
2: बट सर, ये प्रोटीन संश्लेषण में बड़े उपकरण और छोटे उपकरण अपना अपना रोल कैसे निभाते हैं?
0: देखिए, ये समझने के लिए हमें राइबोसोम की संरचना की बारीकियों को जानना होगा।
1: जी सर।
0: अगर आप ये नहीं जानते कि किसी यंत्र में जैसे मोटर में इंजन कैसे काम करता है, तो आप निश्चित ही ये नहीं समझ सकेंगे कि मोटर कैसे काम करती है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: इसलिए राइबोसोम की परमाणु संरचना का निर्धारण करने के लिए हमें उसकी अति सूक्ष्म और स्पष्ट तस्वीर का पता लगाना जरूरी है।
2: यस सर।
5: जी सर।
0: अपने शोध के लिए हमने एक्सरे यानी अज्ञात किरणें क्रिस्टलोग्राफी तकनीक का इस्तेमाल किया है। किसी भी वस्तु की क्रिस्टल आकृति के अंदर छुपे परमाणुओं की संरचना का इस तकनीक के द्वारा पता लगाया जा सकता है। आप इसे 3D फोटोग्राफी समझ सकते हैं।
3: जी जी।
0: फर्क इतना है कि इसमें प्रकाश की जगह एक्सरेज का इस्तेमाल होता है। एक्सरे की किरणों को सिंक्रोटोन्स नाम की मशीन से उत्पन्न किया जाता है। चूंकि दृश्यमान प्रकाश की किरणों की तरंगों के अनुपात में इन न दिखने वाली अदृश्य एक्सरेज की तरंगों की लंबाई छोटी होती है, इसलिए जब किसी अणु पर इन किरणों का प्रहार किया जाता है तो वे उस वस्तु से गुजरते समय अपना पथ बदल लेती हैं। और इस प्रकार अगर उनकी तस्वीर किसी फोटोग्राफी फिल्म पर ले ली जाए तो धूमिल वृत्ताकार आकृतियों का एक पैटर्न बन जाता है।
5: अमेजिंग।
0: ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी फानूस के अंदर प्रकाशमान होने वाली लौ की परछाई दीवार पर पड़ने से एक आकृति बन जाती है।
2: जी सर।
0: फानूस की परछाइयों की आकृति से फानूस की बनावट की कल्पना की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार गणितीय गणनाओं के द्वारा जीव अणुओं की रचना भी पता लगाई जा सकती है। सबसे पहले सन 2000 में हमने राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों की परमाणु संरचना का पता लगाया।
2: जी सर।
0: और इसके बाद आगे के रास्ते खुलते ही गए।
5: That's so amazing, sir.
0: Thank you very much. मुझे आप लोगों में बहुत सारे वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं।
4: Thank you, sir. Thank you very much.
0: I must say, you've been a wonderful audience.
5: Sir, thank you so much, sir. It was wonderful listening to you, sir.
0: You know, science in itself is a wonderful story. तो खूब कहानी पढ़िए।
5: Thank you, sir.
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महान वैज्ञानिक सर वेंकटरमन। इस कार्यक्रम के बाद अब हम खोलेंगे एक पिटारा
7: और जानेंगे कि क्या क्या है इस पिटारे के अंदर।
6: तो सुनिए गीत जादुई पिटारा।

0: So children, how was the song?
1: Very nice.
0: Okay, so listen to this song again and again. Learn it and sing it with your friends, okay?
1: Okay, sir, we will sing.
2: Come back soon. You were just listening to this program. Program coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical coordinator, Bati Langlingdo. Artist, Farhan Ali Naqvi. Child singer, Angel. Child artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Music composition and guidance, Ajit Horo. Sound recordist, Mayank Kumar. Assistance in production, Tanu Gupta. Directed and produced by Vimalesh Chaudhary. This program was brought to you by CIETNCERT, New Delhi, India. Come back soon. अभी आप सुन रहे थे ये खूबसूरत अंग्रेजी गीत, और इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अजीत और
3: विमलेश को तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा, क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
2: जी
1: प्लीज बताइए, आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
2: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है। दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल। साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी। उपचार चल सकता है और भी लंबा।
1: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है, बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना, प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार।

0: होती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे, देख लो दो महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है, इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े, ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुबह 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: नमस्कार, शारदा लॉन्च पैड और सुनो शारदा शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से हमारे सभी दर्शकों और श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने पहले भी हमारे पिछले एपिसोड में स्टार्टअप चर्चा में देखा है कि हम अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग थीम पर लोगों से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी स्टार्टअप में और एंटरप्रेन्योरशिप में और युवाओं के लिए अभी क्या नई दिशाएं आ रही हैं। उसी सीक्वेंस में हमारे पास आज हमारे साथ हमारे अतिथि मौजूद हैं, श्री बी एल गौर जी जो फाउंडर चेयरमैन है गौर सन्स के। कोई भी मोहताज नहीं है किसी भी इंट्रोडक्शन के, और यदि भारत रत्न की तरह मैंने यूपी रत्न बोलूं तो उसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे सब लोग आपके जानने वाले आपके नजदीकी लोग अभी जानते हैं, तो मैं अभी आप इजाजत चाहूंगा कि आपको बाबूजी के नाम से बुलाऊं।
2: थैंक यू,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनो शारदा के स्टूडियो में और शारदा लॉन्च पर शारदा यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। तो हम आपसे बातचीत शुरू करते हैं और थोड़ा सा मैं आपके बारे में पहले हमारे श्रोताओं के लिए चाहूंगा आप बताएं कि अभी आजकल आप किन गतिविधियों में हैं और इतना बड़ा जैसे एम्पायर आप संभाल रहे हैं तो उसके साथ कैसे आपका समय व्यतीत होता है।
2: जहां तक निर्माण की बात है, कंस्ट्रक्शन की बात है, तो वो मैंने 5 साल से छोड़ दिया है। मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ और आज भी बच्चे मुझे चेयरमैन ही मानते हैं। कोई सलाह लेनी होती है तो ठीक है, अदरवाइज 6-7 कंपनी है गॉड्स ग्रुप के अंदर, मैं कोई ज़्यादा इंटरफेयर मेरा नहीं रहता। तो मेरा अपना कार्य जो है वो केवल लिखने का है। अब तक 16 बुक्स मेरी पब्लिश हो चुकी हैं जिसमें मीडिया भी है और इंजीनियरिंग है और हमारी कविताएं और गद्य और पद दोनों है। तो मेरा काम आजकल केवल लेखन का है, अभी 2-3 किताबें और आने वाली हैं।
1: आपके जो इतना एक्सपीरियंस लंबा चौड़ा है उसमें अगर जब वो किताबों की फॉर्म में बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो शायद बहुत ही लाभ उन लोगों को मिलेगा जो लोग आपको सुन नहीं पाते हैं, आपसे मिल नहीं पाते हैं। तो शायद वो सारी जानकारी और सारे विचार उन तक पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है इससे अच्छा माध्यम तो क्या हो सकता है किताबों के थ्रू, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। तो उसके आगे मैं थोड़ा सा, जैसे जो मैं आपके बारे में मैंने पढ़ा है और जाना है कि आप पहले भारत सरकार भारतीय रेल में रहे हैं बहुत वर्षों तक, और उसके बाद फिर वहां से आपने अपना ये सब अपना काम करने का सोचा। तो आज भी हम लोग देखते हैं हमारे जो युवा हैं या बहुत सारे लोग हैं, एक सरकारी नौकरी बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन रहता है कि हमें सरकारी नौकरी किसी तरह से मिल जाए, और आप एक अच्छे पद पर पहुंचने के बाद फिर आपने उसको छोड़ के अपना काम करने का सोचा, तो वो थोड़ा सा हमें बताइए उसके पीछे क्या प्रेरणा रही और किस तरह से आपने शुरू किया ताकि बाकी लोगों को उससे कुछ और प्रेरणा और जानकारी मिले।
2: मैं समझता हूँ मेरी बात से आज के युवाओं को एक प्रेरणा मिलेगी कि आज हम जगह जगह मीडिया में भी देखते हैं, हर चैनल पर देखते हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी सरकार में रोजगार नहीं मिला, हमें तो नौकरी चाहिए। अब किसी युवा से अगर आप पूछें कौन सी नौकरी चाहिए, आप गौरसंस में करोगे कि नहीं नहीं वो तो प्राइवेट है, तो वो कहेगा मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट की नौकरी चाहिए। आप इमेजिन करिए गवर्नमेंट कितनी नौकरियां क्रिएट कर सकती है, किस विभाग में कितने आदमियों की जरूरत है। तो नौकरी की बात जो सोचते हैं, मेरे दिमाग मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूँ कि वो लोग थोड़ा सा हिम्मत ही नहीं होते, अन्यथा नौकरी की क्या बात है। नौकरी आप क्रिएट करो ना कि लोग आपके पास आए नौकरी करने के लिए। मेरे पास ऐसे कितने उदाहरण हैं जो मैं दे सकता हूँ कि कोई भी आदमी बेरोजगार रह ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूँ, मैं हरियाणा में गया एक गाँव में, तो वहाँ एक महिला थी, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, 2 बीघे जमीन, 3 बच्चे। अब वो भूखे मरने की नौबत, तो किसी आदमी ने, आप जैसे व्यक्ति ने उसको कहा कि तुम बी जो शहद की मक्खियां हैं उनके 2 बक्से ले आओ। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, कहते पैसे मैं देता हूँ। आज उसके पास 10 एम्प्लॉय काम करते हैं, वो किसानों की जाके हाथ जोड़ती है कि मेरे 2 बक्से अपने खेत के पास रखवा दो। और उसके बाद वो 10 आदमी उस शहद को कलेक्ट करते हैं, अब वो एक्सपोर्ट की बात सोच रही है वो महिला जो है। ये है रोजगार की बात, सोचो तो सही है कुछ। आज आप बेरोजगार हैं, क्यों बेरोजगार हैं, कुछ करिए ना। मोदी जी की बात को, आज हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कभी एक बात कह दी किसी अपने लेक्चर में कि भाई कुछ ना हो तो पकौड़े तलिए। आज कितने पकौड़े वाले हैं जो इनकम टैक्स देते हैं,
1: बिल्कुल
2: आपने कभी उस दिशा में सोचा ही नहीं। तो विचार जो है ना, आज के युवा को चाहिए विचार, पहले विचार तो क्रिएट करिए। जो विचार आता है वो भी एक हवा की तरह आता है, आपको कैच करना है उस विचार को। जैसे मेरे तो यहाँ इंजीनियरिंग में होता ही है कि सबसे पहले विचार आता है, विचार को फिर हम ऐसी रफ लाइन पर बनाते हैं, फिर उसका नक्शा बनाते हैं, फिर देखते हैं कि हमें काम शुरू करना है। मैंने अपने जीवन में काम शुरू किया तो न उस समय पूंजी थी न श्रम था, केवल दिमाग था, कोई सहारा नहीं था, कोई गाइड नहीं था, बैंक कोई लोन देता नहीं था, एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस जो आज 28 साल के अंदर चल करके यहाँ पर खड़ा है, जिसमें आज लाखों लोग जो है उससे जुड़े हुए हैं और कितनी ही कंपनियां हैं, 216 कंपनी हमसे जुड़ती हैं जब हम निर्माण करते हैं। आज भी मेरी कंपनी के अंदर मैं समझता हूँ करीब 2600 आदमियों का स्टाफ है और जिसमें 500 आदमी केवल स्टाफ वो है जो सबको करता है, बाकी फील्ड में है और ईश्वर है वो चलाता है, सब काम चलते हैं।
1: बहुत अच्छा आपने बोला। और जो स्वरोजगार योजनाएं हम देख रहे हैं इतनी सारी आ रही हैं और इतने अभी आज के टाइम में सुविधाएं उपलब्ध हैं और जानकारी देने के लिए लोग हैं, मदद करने के लिए हैं, मुख्यमंत्री रोजगार योजना है और प्रधानमंत्री की अपनी रोजगार योजना है, कौशल विकास योजनाएं हैं, तो अगर इन सब से प्रेरणा लेकर इन सबका मदद से अगर अपना काम शुरू करें तो शायद स्वरोजगार से आगे जो लोग नहीं भी अपना स्वरोजगार कर पा रहे हैं तो उनके लिए जरूर कहीं ना कहीं नौकरी निकल आएगी। तो बहुत अच्छा आपने तरीका बताया।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने इतनी सुविधाएं कर दी हैं कि जो आदमी छोटी सी खोखा भी लगाता है उसको भी लोन मिलता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: पहले कहाँ मिलता था, पहले तो हमें लोन नहीं मिलता था। जब मैंने काम शुरू किया 90 में तो हमें लोन के लिए हाथ जोड़ने पड़ते थे बैंकों में। आज ये है कि मेरी तो खैर कुछ ईश्वर मालिक है कि बैंक हमें फोन करते हैं कि जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है उसको हम फाइनेंस करेंगे, उनकी ये हालत। क्योंकि जीवन में अगर आप ईमानदारी से किसी बात काम को करते हैं या सोचते हैं तो मैं नहीं मानता कि ईश्वर आपकी मदद नहीं करेगा, आप आगे तो बढ़े कुछ करें तो सही।
1: जरूर, वो पहला कदम लेना वो बहुत जरूरी है कि विचार अच्छा आया और फिर हाँ उसके ऊपर काम करना है और लगन से जुड़ जाए उसके पीछे तो जरूर होगा।
2: अब मंजिल की तो हम बात सोचते हैं, बैठे बैठे सोच रहे हैं कि हमें उस मंजिल पर जाना है, जब पहला कदम ही नहीं उठाएंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे।
1: हम यही सोचते रहेंगे कि बहुत दूर है बहुत दूर है, चलना शुरू करेंगे तो अपने आप पहुंचेंगे, बिना चले तो कोई मंजिल तक नहीं पहुंच सकता है। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया। और हमारे सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: सुनो शारदा में फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का। और तो हमारे साथ श्री बीएल गौर जी आज हमारे अतिथि के रूप में हैं, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी हमने जाना कि किस तरह से इन्होंने अपना, एक जमाने में जब कोई मदद किसी तरह की उपलब्ध नहीं थी, कैसे इन्होंने सरकारी नौकरी से बाहर आकर अपना कार्य शुरू किया और आज ये पूरा, जिसको मैं एम्पायर बोलते हैं, रियल एस्टेट में एक जाना माना बड़ा नाम है वो बनाया इन्होंने। बाबूजी थोड़ा सा हम आपकी फील्ड जो सिविल इंजीनियरिंग की, उसके बारे में जानना चाहेंगे। ये एक ऐसी फील्ड है इंजीनियरिंग में, हमने देखा कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो आज की डेट में सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जरूर है, प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन रियल एस्टेट बहुत ग्रो कर रहा है और ग्रीन बिल्डिंग, सस्टेनेबल बिल्डिंग, इस तरह के नए नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जो लोग अभी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या नया सोचें, क्या करेंगे?
1: कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, जो आज देश के अंदर हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, सड़कें हैं, अस्पताल है, इससे बड़ा कोई, इससे बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं जो लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दे रही है। आज देश के अंदर करीब करीब 16,000 बड़े बिल्डर हैं हमारे इस लेवल के। और आप देखिए कि अगर हम आज 7 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, तो हमारे जैसे और लोग हैं उनके कितने प्रोजेक्ट चल रहे होंगे। ये तो हुआ बिल्डिंग निर्माण की बात। आप हाईवेज में आ जाइए, गडकरी के अंदर आज मैं सोचता हूँ कि देश में जो सड़कें बनी हैं, तमाम फॉरेन की सड़कें भी उसके मुकाबले में कहीं स्टैंड नहीं कर रही। इवन हम अपनी छोटी सी बात बताते हैं, गौड़ सिटी सेंटर, यहाँ गौड़ सिटी है, उसके सामने 430 फुट की रोड है, 430 फुट की रोड इवन किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगी, मतलब बहुत कम मिलेंगी। इस तरह का डेवलपमेंट भारत में हो रहा है। तो ये इंजीनियरिंग के अंदर बड़ी चीज़ें आ गई हैं। पहले शटरिंग लगती थी, बल्ली लगाते थे, ये करते थे, फिर उसको 15 दिन के बाद खोलते थे, आज वो स्थिति नहीं है। अब मायोबैन शटरिंग आ गई है, तो अभी हम यहाँ नीचे काम कर रहे हैं तो ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। और इस तरह से केमिकल्स आ गए हैं कि हम बजाय 15 दिन के 7 दिन में छत खोल देते हैं, तो 7 डेज का वो टाइम बचता है। आजकल जो बिल्डिंगें हमारी बन रही हैं, हम कोई प्लास्टर नहीं करते हैं, ना इनसाइड ना आउटसाइड, केवल फिनिशिंग होती है वह डायरेक्टली। पहले पेंट होता था, प्लास्टर होता था, वो सब चीजें हट गई हैं। आज ग्रीन बिल्डिंग आ गई हैं, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का पैनल्स लगाए जाएं और उनको रोशनी जो है, उनकी जो बिजली है, वो हम सूर्य से प्राप्त करें। और दूसरी चीजें अभी जो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करूं, तो आज कितने आप देखते होंगे, अगर गाजीपुर की तरफ दिल्ली जाते हैं तो पहाड़ बने हुए हैं कूड़े के, हमारी किसी बिल्डिंग में आपको जीरो वेस्ट है। तो सबसे पहले ये गौड़संस ने शुरू किया बेंगलोर से मशीन ला करके, तो हर फ्लैट से हमारा कूड़ा जो है, पहले तो हम एक और सिस्टम करते थे कि हॉपर्स लगे हुए थे बड़े बड़े, जैसी चिमनियां होती हैं ना उस टाइप की, हर फ्लैट में, तो कूड़ा जो है उसमें डाल देते थे। तो रहने वालों ने क्या वो गलती की कि उसमें कपड़ा भी डाल रहे हैं, उसमें ग्रीन वेस्ट, किचन वेस्ट भी डाल रहे हैं, तो वो सब गड़बड़ हो गया। अभी क्या है, हर फ्लैट के अंदर 2 ग्रीन और रेड वो बॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर एक टीम जाती है, वो उनको इकट्ठा करके नीचे भेज देते हैं, लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से आ जाता है नीचे। नीचे एक मशीन रखी हुई है, तो जो किचन वेस्ट है वो उसमें डाल देंगे और जो अलग चीजें हैं, प्लाईवुड है, शीशा है, वो अलग डाल देंगे। शाम को एक टीम आएगी जिसमें करीब 10-12 आदमी होंगे, तो ग्रीन वेस्ट वाले जो किचन वेस्ट है उसको वो

0: छप्पर में डालेंगे और दो घंटे में खाद तैयार हो जाएगी, तो खाद बोरियों में भर के वो चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी, और जो दूसरे हैं वो ट्रक में भर के ले जाएंगे रिसाइकल के लिए। तो देयर इज नो वेस्ट, नो कूड़ा, कोई है ही नहीं अपने किसी बिल्डिंग में, नथिंग। ये एक नई चीज है,
1: तो बहुत बड़ी समस्या हमने देखा है। वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सभी बोलते हैं कि अगर हमें सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल जाए, ड्राई और वेट अलग अलग मिल जाए, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो एक समस्या बनी हुई है।
0: जी,
1: सरकार ने भी, मैंने पीछे कुछ पढ़ा था कि बहुत इसके ऊपर नियम लगाए बनाए हैं, ये सब आपको अलग अलग करना है, डालना है, लेकिन सब जगह नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि आपकी सारी सोसाइटीज में अगर ये इम्प्लीमेंट हो रहा है,
0: सोसाइटीज में,
1: तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती होगी।
0: बिल्कुल, काफी बड़ी प्रॉब्लम।
1: दो घंटे के अंदर वो खाद बनाना, ये भी बहुत आधुनिक तकनीक है,
0: बन के बाहर तैयार हो जाती है, उसको बोरियों में भर लिया जाता है। फिर हम जो ओपन एरिया छोड़ते हैं वो बहुत बड़ा होता है, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, या तुल्लम में रहती है मैडम जो, इनसे पूछिएगा, बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, उसमें घास लगी हुई, पेड़ लगे हुए हैं, तो वो हमारा खाद वहाँ यूटिलाइज हो जाता है। उसी तरह से जो हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं हर बिल्डिंग के अंदर, बहुत बड़ा है, सारा वेस्ट पानी वहाँ आता है, वहाँ ट्रीटमेंट होता है, उससे वही पानी निकल करके कई बार तो इतना नीट होता है कि हम वॉशिंग के लिए उसके लिए यूज करते हैं, नहीं तो अपने पार्क में यूज करते हैं,
1: हॉर्टिकल्चर में वही पानी इस्तेमाल हो रहा है। बहुत अच्छा है, इतना बड़ा ये फील्ड है सिविल इंजीनियरिंग का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन के ही लोग हैं। पहले सोचा जाता था कि आपको दीवारें बनानी है, खड़ा करना है, लेकिन आज की डेट में कंस्ट्रक्शन के अंदर, रियल एस्टेट में इतने फील्ड आ गए हैं, ऑटोमेशन भी लगा हुआ है, सिक्योरिटी सिस्टम भी लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है ये इस फील्ड में रोजगार से रिलेटेड तो कोई इशू किसी को आना नहीं चाहिए, अगर कोई इसमें काम करे और सीखे।
0: कोई इशू नहीं आता। अभी जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ वो किसी भी बड़े बिल्डर के यहाँ जाए, बताएं जी कि मेरे पास लेबर है, मैं टाइल्स लगा सकता हूँ, ही कैन टेक जॉब, स्टार्ट कर सकता है। मैंने तो इसके ऊपर किताबें लिखी हैं, आपको मैंने बताया कि करीब 17 इंस्टीट्यूट में मेरी नीम से नाली तक पढ़ाई जा रही है, करीब 100 आदमी तो मेरे यहाँ लगे हुए हैं, उनका स्टार्टिंग 10-12 हजार रुपए से, 10वीं पास, ओनली 10th पास। अभी जो मैंने रिसेंटली लिखी है कैसे बने विश्वकर्मा, वो 35 मंजिल के लिए लिखी है। मैं तो चाहता हूँ जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है या कोई भी है, मैं अपनी फ्री सर्विसेज देने को तैयार हूँ, उनका कोर्स तैयार हम करा देंगे, अपने यहाँ पढ़ाना शुरू कर, वहाँ से कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर निकलेंगे, और हमें जितनी इंजीनियर की जरूरत नहीं है उससे 3 गुना हमें कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की जरूरत, क्योंकि एक बिल्डिंग के अंदर, निर्माण के अंदर कितने काम होते हैं, सेप्टिक टैंक का काम मैंने आपको बताया, वाटर ट्रीटमेंट का बताया, खाद का बताया, कंस्ट्रक्शन कितने फील्ड हैं, टाइल्स लगनी है, फ्लोर में पत्थर लगना है, डिस्टेम्पर होना है, कंक्रीट का सुपरविजन है, हर एक जगह सुपरवाइजर चाहिए। आज अगर क्वालिफाइड लोग मिले तो एक एक इंडस्ट्री जो है सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकती है।
1: जो इंडस्ट्री अकेडमी का हम बहुत सुनते हैं, जगह जगह पर इस बारे में बात होती है, इंडस्ट्री और अकेडमिक इंस्टीट्यूट को साथ में आना चाहिए, तो मुझे लगता है आपने तो उसके बारे में बहुत क्लियरली बता ही दिया है। इससे अच्छा मौका क्या होगा कि लोग जो इंडस्ट्री वहां पर काम कर रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वही आकर बच्चों को बताएं, और आपने सालों साल ये काम किया है तो आपकी लिखी हुई किताब से अच्छी जानकारी तो कहां से मिलेगी।
0: वीसी साहब या कोई लोग चाहेंगे तो मैं 5-7-8-10 किताबें भेज सकता हूँ, जो कैसे बने विश्वकर्मा उसकी स्टडी करके आप चाहें तो, और मेरी फ्री गाइडेंस रहेगी जब भी आप चाहें।
1: बहुत अच्छा आपने बताया, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनो शारदा के श्रोताओं के लिए, और फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।

0: फिर से स्वागत है सुनो शारदा के श्रोताओं का। और आज हम श्री बी एल गौड़ जी से बातचीत कर रहे हैं और हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग में और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या नई चीजें आ रही हैं, क्या नए रोजगार किस तरह से हो सकते हैं, क्या बच्चों को सीखना चाहिए। बाबू जी, एक चीज हमने इंजीनियरिंग की और कंस्ट्रक्शन की तो बहुत बात की, लेकिन अभी जैसे आपने भी बताया कि साहित्य की तरफ अभी आपका रुझान काफी ज्यादा हुआ, कई किताबें आपने लिखी हैं, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को उसके बारे में बताइए कि अभी आपकी नई किताब कौन सी आई है और आप किस दिशा में आगे लिख रहे हैं।
1: नई किताब तो मेरी बीता सो अनबीता, मेरी आत्मकथा है। मैं ये मानता हूँ कि आदमी की जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो बीत कर भी नहीं बीतते हैं। ये आप तो युवा हैं, सबकी जिंदगी में ऐसे पल आए होंगे कि वो दिन बीत गए लेकिन आज भी आप उनको याद करते हैं। तो मेरी किताब का शीर्षक है बीता सो अनबीता है, ब्रैकेट में आत्मकथा। उसमें मैंने कैसे अपना जीरो से काम शुरू किया, क्या हुआ, कविता का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ। तो एक बड़ा एक शेर है किसी का कि दर्द को दिल में दे जगह है, दर्द को दिल में दे जगह है अकबर, इल्म से तो शायरी होती नहीं। अगर मैं MSc कर लूं तो शायर नहीं बनूंगा। शायर बनने के लिए तो दिल में अगर कोई फीलिंग होगी, मानवता के लिए, किसी के लिए कोई दर्द होगा, मोहब्बत होगी, तभी आप शायर बन पाएंगे, कवि बन पाएंगे। तो वो मन से रिलेटेड बात है, दिमाग से रिलेटेड बात नहीं है
0: जी।
1: वो मैंने बल्कि आज के युवाओं के लिए मैं कुछ दो शब्द कह भी सकता हूँ कि जो मन है, ये मन ही हमसे सब कुछ कराता है। जहाँ साहित्य की बात है तो मन से ताजमहल बनते हैं। मैं अगर चाहें तो आप मैं दो चार लाइनें सुना।
0: जी जरूर जरूर बिल्कुल।
1: कहता है कि मन से ताजमहल बनते हैं, मन को कभी न थकने देना, मन थक गया तो आप थक गए, मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं और मन से निर्मित होते मंदिर मन से ताजमहल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन के भाव बनाते मस्जिद मन से गुरुद्वारे बनते हैं और मन के जब हिमखंड गले तो गलकर गंगा जल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से उपजी प्रेम कथाएं, मन से जन्मी वेद ऋचाएं, यदि मन पा जाए मन भावन हर पल स्वप्न महल बनते हैं। और मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं और मन से निर्मित होते मंदिर मन से ताजमहल बनते हैं। मन का मीत अगर मिल जाए, मन का मीत अगर मिल जाए, निज सपनों में आए जाए, तब अंतस के प्रेम कुंड में सपने नील कमल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते हैं। मन हारे तो हारे जीवन, मन हारे तो हारे जीवन, मन जीते तो बंजर उपवन, और चाहत मन की बनी रहे तो दोहे गीत गजल बनते हैं। मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनता है। तन चाहे जर्जर हो जाए, कितना भी बुढ़ापा आ जाए, तन चाहे जर्जर हो जाए, मन में पीड़ा भर भर जाए, लेकिन अंतिम सत्य यही है, लेकिन अंतिम सत्य यही है, जीवन रथ मन से चलते हैं और मन को कभी न थकने देना, मन से राजमहल बनते।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत सही बात है। तो इसलिए कहते हैं कि इंसान शरीर से चाहे कैसे भी थक जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर मन मजबूत है, उसमें नए विचार आ रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहते
1: हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ,
0: बिल्कुल
1: मेरी खुराक मन है, मेरे विचार जो है, मेरा साहित्य है, वो जीवन है, वो जीवित रखता है मेरे को, कंक्रीट जीवित नहीं रखती है।
0: शायद आज भी किसी भी युवा से ज्यादा ही आप बिल्कुल योगदान है, आज के डेट में भी है। तो बहुत अच्छा रहा, अगर हमारे पास ये ऑडियंस होती तो मुझे लगता है बहुत देर तक तालियां बजती रहती आपके इसके ऊपर। लेकिन जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं जो, तो जरूर इससे बहुत प्रभावित होकर और कुछ ना कुछ नया करेंगे, और यही हमारी कोशिश रहती है इस तरह के कार्यक्रम से, बातचीत से, कि किसी को भी परेशान नहीं होना है, सोचना नहीं है। बहुत लोग आते हैं, हमें ये मदद नहीं मिल रही, वो नहीं मिल रहा, पर शिकायतें करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है शिकायतें और परेशानियां तो एक जिंदगी में आती रहेंगी, हमेशा रहेंगी। तो उससे बाहर निकलकर, उससे आगे बढ़ के और उससे लड़के किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और कुछ ना कुछ नया करते रहने की कोशिश करते रहना है, वो बहुत जरूरी है। सही दिशा में कार्य करेंगे तो जरूर हम कुछ ना कुछ अच्छा पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ समय बिताने का और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैं सुनो शारदा, शारदा लॉन्च पैड और शारदा यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हम बहुत जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे और नई इस बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा।

0: www.sharda.ac.in.
1: The world is here.
2: पौष्टिक आहार है टीबी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार। पौष्टिक आहार से उपचार परिणाम बेहतर होते हैं और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार आता है। इसीलिए तो निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत इलाज के दौरान हर रोगी को मिलते हैं 1,000 रूपए प्रतिमाह पोषण सहायता के रूप में और सभी टीबी रोगियों के लिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने का प्रावधान है। साथ ही टीबी रोगियों के इलाज के दौरान हजारों निक्षय मित्र उन्हें पोषण किट प्रदान करते हैं। आप भी निक्षय मित्र बनकर टीबी रोगियों की सहायता कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए niksha.in पर जाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
3: निक्षय मित्रों से मिली शक्ति टीबी के मरीजों को नई ऊर्जा दे रही है।
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: महावारी के दौरान क्या करें और क्या ना करें। महावारी के दौरान एक ही पैड का लंबे समय तक बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए।
1: आप किसी भी ब्रांड के सैनिटरी पैड का उपयोग कर सकते हैं। महावारी के समय दिन भर में कम से कम 2 से 3 बार सैनिटरी पैड को बदलना चाहिए। पैड को ज्यादा गीले होने पर वो फट सकता है, जिससे सैनिटरी पैड में मौजूद हानिकारक रसायन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
0: याद रखें, महावारी के दौरान स्वच्छता का महत्व और बढ़ जाता है। गंदे, मलिन, अस्वच्छ हाथों से सैनिटरी पैड बदलने से हेपेटाइटिस बी जैसे वायरस और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
1: कभी कभी योनि पर पानी का अत्यधिक छिड़काव उसे बैक्टीरिया के संपर्क में ला सकता है। योनि एक ऐसा अंग है जो खुद को स्वयं साफ कर सकता है, इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ दें।
0: असुरक्षित यौन संबंध अपने आप में बहुत जोखिम भरा है और ऐसे में रक्त स्राव का मिलना और जोखिम भरा हो जाता है। महावारी के दौरान यदि महिलाएं असुरक्षित यौन संबंध बनाती हैं, तो यौन जनित रोग हेपेटाइटिस बी और HIV का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
1: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
0: ये खास जानकारी आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर यूनिसेफ के सहयोग से।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। समय 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन सुनो।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए

0: गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: इस गांव में पहले बहुत लोग रहते थे। एक राजा के प्रकोप से एक ही रात में सबने एक साथ गांव छोड़ दिया, पर एक प्रेम कहानी यहाँ की अमर रह गई और वो है इनकी।
2: ये तो तुम जैसा।
3: हाँ नाया, ये लड़की तो फोटो में तुम जैसी है। कहीं हम दोनों सोलमेट्स तो नहीं है?
2: तुम मुझे राजस्थान घुमाने लाए हो या डराने लाए हो?
3: क्या पता हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों पुराना हो, है ना?
2: थत।
3: अरे अरे अनाया, बात तो सुनो मेरी। थैंक यू।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह।

0: सात से लेकर रात के आठ बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
1: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीवी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको। इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं, तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
2: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेट कर उसे पेट पर रखें।
1: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकल कर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉन वेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना।

0: वारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
3: रोहन अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
2: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
3: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
2: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
3: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
2: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
3: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
2: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
4: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
5: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुनो शारदा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
4: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. Original credits album Heera Panna, singer Kishore Kumar, Lata Mangeshkar, lyricist Anand Bakshi, music director Adi Barman, aur isi gaane ko recreate kiya gaya hai. So let's enjoy it. Recreation credits artist Deepshikha Raina, music director Anurag Abhishek. Chali sunte hain Panna ki tamanna hai, sirf aur sirf Surur Sharda 90.8 FM par. Panna

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हेलो मेरी प्यारी दोस्त तारा।
1: अरे क्या हुआ टिंकू, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो?
0: ओ मुझे बुखार हो गया है।
1: अप्पा टिंकू को बुखार हो गया है? तो डॉक्टर ने क्या कहा टिंकू, क्यों हुआ बुखार?
0: पता नहीं, मैंने तो डॉक्टर को दिखाया ही नहीं है।
1: ओ नो नो नो नो नो टिंकू, बुखार में तेरी पड़ेगी भारी। और तुम तो ऐसी जगह रहते हो जहाँ मच्छर भी बहुत हैं। हो सकता है मच्छर के काटने से तुम्हें बुखार हुआ हो।
0: ओ हाँ, और कुछ दिन पहले मुझे मच्छरों ने काटा था।

0: अब मैं क्या करूँ तारा?
1: क्या हुआ तारा?
2: आ, जल्दी आओ अब्बा। टिंकू, तुम घबराओ नहीं, सबसे पहले पापा मम्मी से कहो कि तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाए।
1: और हाँ, किसी झोला छाप डॉक्टर के पास नहीं बेटा, अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाना और बिना डॉक्टर से पूछे कोई भी दवाई मत लेना। ओके? कोई भी बुखार दिमागी बुखार हो सकता है, जिससे अपंगता या मृत्यु भी हो सकती है।
0: ठीक है, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ। ओके अंकल, बाय बाय।
2: बाय टिंकू।
1: बाय बाय बेटा, टेक केयर।
2: तुम सब भी समझ गए ना?

0: जरूर जाना, जरूर जाना।
1: अगर नहीं समझे तो मैं आऊंगी करने बार, जैसे आई थी पिछली बार।
2: बिल्कुल नहीं, तारा है हमेशा तैयार, और ये मेरा आखिरी वार।
1: तुम जीती, मैं हारी, तारा तुम हमेशा रखती हो पूरी तैयारी।
2: दोस्तों, अब मच्छरों को हराने की बारी तुम्हारी। तो क्या टीम तारा है मच्छरों से लड़ने को पूरी तरह तैयार?
3: टीम तारा है तैयार।

0: भूलना नहीं मच्छरों से बचने के उपाय।
1: फिलहाल तारा अप्पा की ओर से बाय बाय।
2: हाय दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट है 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व।

0: प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की, पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
3: जी।
2: प्लीज कैरी ऑन।
3: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
2: और इन सब का मैं बताता हूँ सार। मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
3: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
2: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा, देश जीतेगा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको पता है, जन्म के एक घंटे के अंदर नवजात शिशु को माँ का दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात शिशु को बीमारियों से बचाता है।
2: जन्म के बाद नवजात बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। उसे शहद, पानी, घुट्टी या अन्य कोई पेय या खाद्य पदार्थ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से नवजात शिशु बीमार हो सकता है।
1: स्तनपान कराते समय मास्क तथा सैनिटाइजर या साबुन और पानी से हाथ की धुलाई जैसी कोविड उपयुक्त व्यवहारों का पालन करना मत भूलिएगा।
2: संक्रमित माता भी अपने बच्चे को स्तनपान करा सकती हैं।
1: स्तनपान संबंधी अधिक जानकारी आप आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या नर्स दीदी से प्राप्त कर सकते हैं।
2: जब होगी सही देखभाल, तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
1: शिशु की सही देखभाल से फर्क
2: पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: परिवार नियोजन के बारे में फिल्म अभिनेता सचिन क्या कहते हैं, जरा सुने।
2: परिवार उतना ही हो जिसको आप सही शिक्षा दे सके, बेहतर जीवन दे सके और स्वस्थ रख सके। परिवार छोटा होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, तो माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेंगे। आज तो अनेक उपाय भी है, कॉन्डोम है, कॉपर टी है, गोली है। डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह से ही कोई भी एक उपाय चुन लीजिए। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे।
1: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा स्थिति है जो बैक्टीरिया के शरीर में प्रवेश होने के बाद हानिकारक टॉक्सिन्स के निकालने से होता है। ये अक्सर नव युवतियों में महामारी के दौरान टैम्पोन के प्रयोग के कारण भी होता है, हालांकि ये किसी भी उम्र में हो सकता है।
2: ये कुछ विशेष प्रकार के टैम्पोन के प्रयोग से बैक्टीरिया के वृद्धि के कारण टॉक्सिन्स के निकलने से होता है।
1: इसके लक्षणों में तेज बुखार, उल्टी, दस्त, मांसपेशियों का दर्द, कमजोरी और चक्कर आना और चकत्ते पड़ना है। ये लक्षण एक साथ आते हैं और समय के साथ बिगड़ते जाते हैं।
2: टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी TSS एक चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति है, इसलिए ये जानना जरूरी है कि इससे बचाव कैसे किया जाए और इसके क्या लक्षण हैं। सही इलाज से ये ठीक हो जाता है।
1: ये लक्षण दिखने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता या ANM से संपर्क करें।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
3: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
9: Hi, I'm Ranvijay. आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा at 90.8 FM.